फौजीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजय देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना शोक करे संसार चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बावे कार इक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार कोई जी आखें सोतू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता कुलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाचार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुमियार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चढ़ चढ़ को अंगियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुन चुक लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हों विच आया हों विच गया हों विच जमया हों विच मोआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सत्यार कूड़ियार हों विच पाप पुन विचार हों विच नरक सुरग अवतार हों विच हसै हों विच रोवे हों विच परिये हों विच होवे हों विच जाति जिनसी खोवे हों विच मूर्ख हों विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हों विच माया हों विच छाया हों मैं कर कर जंतु पाया हों मैं बूझे तांगर सूझे ज्ञान में हूं ना कर सतलूझे नानक हुक्मी लिखी है लेख जी हा वेख है ते आवेख महला दूजा हों मैं एहा जात है हों मैं कर्म कमाए हों मैं ए बंदना फिर जोनी पाए हों मैं किथो उपजे किथो जम ए जाए हों मैं एहो हुक्म है पे है किथ फिराए हों मैं दीर्घ रोग है दारू भी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव की ती संतोखी जिन्नी सच्चो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर शुक्र कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बस्ती सी अगला नित देवे चने सुवाया वड़े आई वड़ा पाया स्लोक।

सेत जहां सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता, सो करता चिंता करे जिनु पाया जग, तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग, महला पहला लख ने किया चंगिया लख पुन्ना प्रवान, लख तप प्रतिष्ठा सहज योग बेबान, लख सूरतन संग्राम रन में चुते प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण, जिन करते करना किया लिखिया मन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी, सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया,

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, परी है जेते बर्स बर्स, परी है जेते मास, परी है जेती आर जा, परी है जेते सास। नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला, लिख लिख पड़े आते ता पड़िया, बहु तीर्थ पवे आते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोवे जी आपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बस पर न पहरे एन इस पहरे, मौन विगू

मूर्त होए नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार।

मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार करमी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे हो कट ना कोई आखे पग परवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जापे महला पहला वदी सवज्जग नाम का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जाप मजोर है अगे जियो नवे जिनकी लेख है पपवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खपन ते आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वेकी जगत उपाया इकना नो तू मेल ले इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

समुद्र तपस्या तीरांत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूरया। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार कया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवाता आत्मा।

अत दीर्घ अतमुच ओजे आवे आस पर जाए निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए ताता राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे शीश निवाए क्या थी है जा हृदय को सुदे जाए महला पहला पर पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख चूठ बेपूखन सारंग त्रैपाल से हाल विचारंग गल माला तिलक लीलाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे विर सतगुरु वात न पावे पौड़ी कप्पड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावदे राय पीड़े अग्गे जावना नंगा दोजक चालिया तांज से खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना श्लोक महला पहला दया कृपा संतोष सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तब कपाहो कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होई पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जोर महला पहला नाय मने पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महिला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना तैरी तग ना अखी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे

कर लावो गोबर कर न जाई, तोती टिक्का तै जप माली तान मलेच्छा खाई, अंकर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे तरंगा महला पहला, मानस खाने करें।

किरतता हुआ पाप पवित्र पापी सो संग दया तुका पिया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए नानक ए वह जानिए चित मुख तुका पाए। महला पहला पन जमिए पन निमिए पन मंगन भी आहो पंडो हो वह दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड हो वह बंगान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज न कोए नाम पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है।

का फिके पाए, फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला। अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल, असर तीरत जे नाम है उतरे नाही मैल। जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार, तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना। दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए, दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल। दार ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल।

साहिब तुख है जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए। नानक सेवक काड़ी है जैसे ती खसम समाए पावड़ी। नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार। आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार। आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार।

यो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कवन काज जब उपजय बिन सह कहो मुहे समझाया देव करो दया मुहे मार्ग लावो जित पह बंधन टूटे जन्म मरण दुख फेर कर्म सुख जी जन्म ते छूटे राव माया फास बंद नहीं फारे अब मन सुन ना लूके आपा पद निर्माण ना चीनिया इन विद अभियो न

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत न मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

आई, दिल में सोच विचार कवा दे, पिस्त दोज किन पाई, काजी तय कमन कतेब बखानी, परत गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर न जानी रहाओ, सकत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई, सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, ताते हिंदू ही रही है, छाड़ कतेब राम पज बौरे, जुल्म करत है पारी, कबीर है पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचहारी। आशा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई, रे बौरे तुह करी न राखे कोई, तू राम नाम जब सोई रहा, काकी मात पिता थो काको, कवन पुरख की जोई, कट कूटे को बात न पूछे, काडो काडो होई, ब्योहरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए पाई, लख छुटकाए त्रिया रोवे, हंसी के ला जाए, कह कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कह पाई, इस बंदे से जुल्म हो।

एक तो के संत सांग अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पर ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तक न जाए रहाओ। तन कर मटकी मन माए बिलोई, इस मटकी में सब सिंजोई। हर का बिलोवना मन का विचारा, गुरु पर साथ पावे।

कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछ तप न कियो, 30 वर्ष कछ देव न पूजा, फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत तें ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए लह न गयो, आई तलब गो

खान करारा तहर खवाद न की जय रे मन, सुकृत कर कर ली जय रे मन। रहाओ कुम्हारे एक जो माती गूंदी, बहु विद्वानी लाई, काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई। तू मैं तन राशन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, जमकर दंड मूंड में लागे खिन में करे निवेरा। हर जन उत्तम पग सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल च तारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरह निवाज गुजारे।

कह जाने पाचो मुस मुसल्ला बिछावे तब तो दीन पछाने खसम पछान तरस कर जी में मार मनी कर फीकी आप जनाए अवर को जाने तब होए पिस्त सरी की माटी एक पेक तर नाना ता में ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर एक बूंद न बरखे।

मुखोन निक्षेबाता थाके पंच दूत सब तस्तर आप आपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पाए दसह बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्याव जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी।

जिन साच पछाणिया तिन सरपनी काई, सरपनी ते आन छूछ नहीं अवरा, सरपनी जीती कहां करे जमरा। ए सरपनी ताकी कीती होई, बल अबल क्या इस्ते होई, ए बस्ती का बस्त शरीरा, गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा। आशा कहां स्वाम को सिमरत सुनाए, कहां साकत पे हर गुण गाए, राम राम राम रमे रम रही है, साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ। कौआ कहां कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए, सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया, अमृत ले ले नीम सिंचाई, कह कबीर ओआ को सहज न जाई। आशा लंका सा कोट

चेत होई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कतहू जाई कह कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला पूत पिछेरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभे सुनो तुम भाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बिलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल।

पासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हूँ पांचों तत् बराती राम राय स्यो पावर ले हो आत्म तिह रंग राती गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहो नाभि कमल में बेदी रचने ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलो पाया असबद पाव हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट के तीस उजाना कह कबीर मोहि ब्याह चले हैं पुरुष एक भगवाना आशा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर के बिह जरोरे मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो किन विद रहन रहो रे से जय रमत नैन नहीं देखो ये दुख कासो कहो रे रहाओ बाप सावका करे लड़ाई माया सद मतवारी बड़े पाई कह जब संग होती तब हो ना प्यारी कह कबीर पंच को चगरा चगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया आशा हम कर सूत तने नित तान।

गोविंदा जम द्वार जब पूछस बवरे तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई जन्म जन्म रखवारे कबहू न पार उतार चरायो कैसे खसमा मारे तू बामन मैं काशीक जुल्हा बुजो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे कूपत राजे हर्षो मोर त्याना आशा जब जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निधान बाबा माया।

अब हुन रूप न होई, ताजा तन साज सब खाता, राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरी।

गया परम सब छूटे। सर्व पूत ए तय कर जानिया चूके बाद विवादा, कह कबीर मैं पूरा पाया पहे राम प्रसादा। आशा रोजा तरह मनावे अल्हो स्वागत जी सिंघारे, आपा देख अवर नहीं देखे काहे को चख मारे। काजी साहिब एक तो ही मैं तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे ताते जन्म अलेख है। रहाओ साच कतेब बखाने अल्हो नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने ना ही कछ गौरे जो दिल में खबर न होई। अल्लाह गैब सगल कट पीतर।

ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंदरावा बिटवे राम रमौआ लावा रहाओ। कह कबीर सुनो मेरी माई इन मुंडियन मेरी जात गवाई आसा रहो रहो री बहुरिया कुंगत जिन काडे अंक की बार लहेगी ना आडे रहाओ। कुंगत काड गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे कुंगत कादे की एह बड़ाई दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगत केरो तो पर साचे हर गुन गाए कूद है अर नाचे।

आशा कोरी को काहू मरम न जाना, सब जग आंत आयो ताना। रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे।

तह कांति मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूत है सूत में।

जैसे मेंढुक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हारंबे, ता सगली सेंतराई। दिन सुनरे बेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से।

आसा। मन मेरो गाजी जुहबा मेरी काटी, मत मत काटो जमकी फांसी, कहां करो जाती कह करो पाती, राम को नाम।

आठ पहर अपना खसम के आवो। सोने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांडे। काहे को की जय ध्यान जपना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामी के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे।

त्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकि के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ

काल सास अदद लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुर ज्ञान भगत जन।

रविदास पने जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही आशा। तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत सन तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल,

तुझे चरण अरविंद पान मन, पान कर पायो पायो रमैया धन, रहाओ संपत विपते पटल माया धन। पान है मगन हो।

जन रविदास राम रंग राता, क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है राव। जब कछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सुरत बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मय, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, तृप्त अघाने मुकुट भय। ज्योत समाए समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने तन पाया करनी तर, मिल जन संत सम

शोक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाठिया जे मन उरसा होए, करनी कुंगू जेर ले कट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर दे पखालिए जे मन तोवे कोए, झूठ लह जियो।

कर रहाओ। रव सस दीपक जा के त्रिभुवन एका ज्योत मुरार, गुरुमुख हुए सो एनस निर्मल मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाज करे नित चगरा दो लोचन क्या हेरे, अंतर ज्योत शब्द तुन जागे सतगुर चगर निवेरे, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी सच महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन नदर करो निस्तारा।

ताए जित कम हर विसरै दूजे लगै जाए ऐसा सतगुर सेवियै मना जित सेवियै गोविंद प्रीत उपजै अवर विसर सब जाए हर से की चित गहर है जरा का पौ न हो गई जीवन पदवी पाए रहाओ गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप से ती आप खाया तामन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समयी दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई जे लोचे सब कोई पूरे की पाल विच्चों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुरु का पाना चित करे सतगुरु आपे कृपा करे गुजरी महला की जा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाये दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी हर मेरी प्रीत रीत है हर मेरी कथा कहानी जी गुर प्रसाद मेरा मन पीजे यहाँ सेव बनी जियो राव हर मेरा सुमृत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंधक हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साथ अंत हो सखाई हर दिन होर रास पूरी है सर्दियाँ नाल न जाई हर मेरा तन मेरे साथ चाले जहाँ हो जाऊं तह जाई सो टूठा जो टूठे लागे सूठे कर्म कमाई।

सतगुरु मिले हर मन वसै सहजी रह समाए रहाओ। जा पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए बैराग ते हर पाए हर सु रह समाए। शिव मुक्त जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए दसवें द्वार रहत करे त्रिभुवन सो जी पाए। नानक गुर ते गुर होया वेखो तिस की रजाए वो कारण करता करे ज्योति ज्योत समाए। गुजरी महला तीजा राम राम सबको कहे कहे राम न होए गुर प्रसादी राम मन वसे ता फल पाए कोए। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर किस कदे ना भी

अंत गया पछताए। शिव मन काशी सब तीरथ सिमरत सतगुरु दिया बुझाए। अक्सर तीरथ तिस संग रहे जिन हर हृदय रहा समाए। नानक सतगुरु मिले हुक्म बुझिया एक वसिया मन आए। जो तुद पावे सब सच है सच्ची रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच्चे। दूजे पाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सो जी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई रहा। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय न कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न होए।

गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हर जन केवड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदार प्यास, हर हर

गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पादहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुरु संगत पाए तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम प्रगास, गुजरी महला चौथा, गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सतसंगत शब्द मन मोह है, जप गोविंद गोविंद त्याय सबको दान दे प्रभ ओ है, मेरे भाई जना मोह को गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है, रहाओ सुख सागर हर पगत है गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है, जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है, दुर्मत पागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रो है, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विस्ता खाए मुख गो है, अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है, नानक तन तन वड्डे वड पागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा, हर जन उत्तम उत्तम बाणी मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सरदार।

तुम प्राण सतगुर गुर पूरा हम पापी गुर निस्तारे रहाओ। गुरमुख वड पागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे हैं गुरमत भगत पंडारे जिन दर्शन सतगुर सतपुरुष।

नानक जन हर की शरण आई, हर पावे हर निस्तारे। गुजरी महला चौथा। ओ दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई। सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपे दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई। गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई। मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुरु शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई। नाम बिना रस कस दुख पावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई। जो जन हर प्रभु हर हर शरणा, तिन दर्जे हर हर देव डे आई। तन तन सबा सह।

जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपे लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से पाजीन मोए मर जावे। अनद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अनद करो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे। ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी मेला चौथा कर कीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना को संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे हो मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई, विच्चे दुरुस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर्ष्यों बने आई, तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभु पाई। जित कारे कम हम हर लाए, सो हम करें।

तू पाए ता कारज आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे पास ठहरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक हो सगले व्यवहारी रहाओ। शास्त्र वेद सिमरत सब सो दे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। असच मज्जन कर स्नाना, प्रम आए थर सारी। अनित सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग पायो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेष बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमक न बिसरो।

रहाओ, हर तन स्नान हर तन ज्ञान, हर संग लाए त्याना, हर तन तुल्हा हर तन देड़ी, हर हर तार पराना।

अमृत पाई आश्चर्य हर प्रकार खावो खर्चो तोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुम को हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुम को होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो वो हर चरणा हो कौला नानक दास।

काट का तुय अंतर सर्व निरंतर रंग रव्यो रंग राता पय कृपाल दयाल गोपाला ता निरपय के कर आया कल कलेश मिटे छिन पीतर नानक सह समाया गुजरी महला पंजवा।

तिन पौ सागर तरिया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के संबंध सेन साक, तित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचित फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी। सिमरत नाम कोट उजियारा, बस्त अगोचर सूजी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया, तै पंजन हर राया। साध के चरण तूर जन बांचे, सुख नानक हो पाया। गुजरी मेला पंजवा, पंच पदा कर दूजा इको अंकार।

नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुना आवे जाई, हर जप माया बंधन टूटे। अरे कृपाल दयाल प्रभ मेरे, साध संगत मिल छूटे। रहाओ आठ

नमस्कारो वर्ण जात को पूछे नाही बासे चरण रवारो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी कही जय जन को अंग निरारो रहाओ साध संग नानक बुध पाई हर कीर्तन आधारो नाम देव त्रिलोचन।

मुन जोगी शास्त्र गे कहावत सब चीने बस अपने ही। तीन देव अर कोट तेती सा तिनकी हैरत कछ न रही।

कहो नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मेला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिन का बल है थोरा, अनित रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोह अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर

मेरे सतगुर मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जी आ सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा।

ओर चित चित वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दास तुमरो उदरस आखी फोर। गुजी महला पंजवा।

चरण कमल संगराच सगल जीव जाको आराध है ताहू को तू चाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार होए सहाय जिस तू राखे किस कहा करे संसार। गुजरी महला पन्नवा जल की तेज सवारी आप हर हर नाम दियो गुर अवखद उतर गयो सब ताप राव हर गोविंद रखियो परमेश्वर अपनी कृपा तार।

पुरख कपटे अनक जुगत कर कायो बिसरत प्रभ के ते दुख गनिये महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्यवहार मिथ्या पज सदा भगवंत रहाओ नाम एक आधार भगता ईत आगे तेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करण कारण समरथ श्री कर शरण ताकी गही मुक्त जुगत रवाल।

रविया सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभु के नाम अगम

साथ साथ ना बिसर कब हूँ ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अनक रसना क्या बखाने अगनत सदा कथ दीन दर्द निवार तारण दयाल कृपा करण अटल पदवी नाम सिमरण दृढ़ नानक हर हर शरण गुजरी मैला पंजवा अहं बुद्ध बहु सगन माया महादीर्घ रोग हर नाम औखद गुरु नाम दीनो करण कारण जोग मन तन बांसी है जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते मद आशा कुकरी विकराल गुरु ज्ञान कीर्तन।

लेशनु ते तै परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाम रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे पाग लिवलागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

रात कर आंगन मेरे पोप पत्र पट डाला सर्व जोत निरंजन शंभू छोड़ो बहुत जंजाला सुन सुखवंते नाम।

जोगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिष्माया मन तत अविगत त्याया गुरु प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात कचियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद तासर साधन जागत नाही सूता महा गंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मम पुनः न गर्भं बिताज अमृत पियाया गुजरी मेला पहला कवन कवन जाचे प्रभु दाते ताके अंत न परे सुमार जैसी पूख होए अब अंतर तू समरथ सच देवनहार ऐ जी जप तप संयम सच आधार हर हर नाम।

जल थल तरण जगन तह नाही आपे आप किया करतार। ना तद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभदाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार ऊंदे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार। सिद्ध समाधि

गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। ऐ जी बहुते पेट करें पिछिया को के ते उधर परन कहताएं बिन हर भगत।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वाक हृदय हर निर्मल, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

निंदक नर काले मुख निंदा जिन गुर की दात न पाए। ऐ जी शरण परे प्रभु बख्श मिलावे बिलम न अद्वार आई। अनदे मूले नाथ सिरनाथा सतगुर मेल मिलाई। ऐ जी सदा दयाल दया कर रव्या गुरमते प्रमन चुकाई। पारस पेट कंचन तात होई सत संगत की वड़ियाई। हर जल निर्मल मन स्नानी मज्जन सतगुरु पाई पुनरप जन्म।

पज शरण सतगुरु उबरे हर नाम रिद रमणं गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर जान रतन सारं तै पाए भगत तर पर जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ सरणी लब लोभ।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जपत रहे।

एका जोत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम वाणी गावे, अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म पया तिन केरा आप तरे कुलतारी। मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, कोई डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल तोवे, ओ मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उर्वार न पारी। यो परपंच खेल किया सब करते, हर करते सब कल तारी। हर एक को सूत वरते जुग अंतर, सूत खिंचे एकंकारी। रसन रसन रस गावे हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की बिद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कब है न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवें करे तिस बिन।

ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जब मैं ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने अपना, अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर सबद सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायुन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों करिए तारी, अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हौ मैं छड़ विकारी, हर हर नाम त्याय है।

होए सो जाए। हो मैं मन अस्थूल है क्यों कर विच दे जाए। सतगुर मिले हो मैं गई जोत रही सब आए। इहो जियो सदा मुक्त है सहजे रहा समाए। पौड़ी प्रभ संसार उपाय कै वस अपने कीता। गणते प्रभु न पाइए दूजे परमीता। सतगुरु मिले जीवत मरे बुझ सच समीता। सब दे हो मैं खोइए हर मेल मिलीता। सब किछ जाने करे आप आपे विगसीता। श्लोक महला तीजा। सतगुर स्यो चित न लायो नाम न वस्यो मन आए। त्रिग एवेहा जीवया क्या जुग मैं पाया आए। माया खोटी रास है एक चसे में पाज लह जाए। हथों छुड़की तन स्याव होए बदन जाए कुमलाए। जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वस्या मन आए। हर नाम त्यावे रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए। नानक सतगुर सो तन सौंपया।

आई जल मोई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय किते न पाई है हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर ना।

केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल ना जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जे रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जी ऐसे

जिना नाम तन खटियाए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गहर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै।

आए मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे तिन बूझ ना काई पाए हलत पलत ओए सुख ना पावे अंत गए पछताए गुर प्रसादी को नाम त्याए तिस होमे विच्चों जाए नानक जिस पूरब होवे लिखिया सो गुर चरणी आए पाए महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ ओए तरम रलाए ना रलन ओ ना अंदर कूड़ सुहाओ नानक करते बनत बनाई मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे गुरमुख तरे जप।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अंदिन हर लिवलाए।

हर नाम त्यावे हर नामो गावे हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुकुम मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हों मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा, गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे सच नाम चित लाया। गुरमुख अनदिन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा, सत गुर जिना

ता गुर मिले अस्थिर रह समाए। नानक मन ही ते मन मानिया ना किछ मरे न जाए पौड़ी। काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहा आपे रस भोगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, जो तिस पावे सो करे हर करे सो होगी। हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाए दा।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाह वाह करें सही जन सोने तिन को प्रजा पूजने आई। वाह वाह करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड कुसत अभिमानी परम पूले नदर नामनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यों लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिव लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाए, हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाए, हर के पाणे सुख पाये हर लाहा नित ली जाए, हर के तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जाए, हर का पाणा तिन्नी मन्या जिना गुरु मिली जाए। श्लोक महला तीजा, वाह वाह से जन सदा करें जिनको आपे दे बुझाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हो मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुर सिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

जिन सेविया तिन फल पाया हो तिन बलिहार है जाओ। वाह वाह गुणी निदान है जिसनो देसो खाए। वाह वाह जल थल भरपूर है गुरमुख पाया जाए। वाह वाह गुरसिख नित सब करो गुर पूरे वाह वाह पावे। नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ ना आवे। पौड़ी हर जियो सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी। सतगुर ते सच पछाणिए सच है समाणी। अन दिन जागे ना सवे जागत रहन विहानी। गुरमति हर रस

पाए खुआए जम्मण मरण न चुकई होमे विच दुख पाए जिना सतगुरु स्यों चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो वही ना ओए दुख सहाए नानक गुरमुख उबरे।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहनाए प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुर मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पै मल कटिए निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, एथे सुख वडियाईयां दरगे।

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगथिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आ प्रवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उच्चिया कर उच्चा निर्णय महल पगती कर सरे सज्जन पाहुणे हो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याए जी जंत सब तेरे आ तू रहा समाए जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाए चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यो चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायुन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आप

गुर आराधना जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुमना गुरु नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाये थाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वत दे, जग में उत्तम कादिये विरले के महला पंजवा। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन, साप जना कै संग पव जल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माय बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी। अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है, सच्चो सच्चा सच सच निहारी है, कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है, सबसे दे दातार जेत उपारी है, इकत सूत परोए जोत संजारी है, हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है, प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है, तेरी गत मित लखी न जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा। जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे, जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे, जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए, जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा। किती बहन बहने मुच बजाएं वज, नानक सच्चे नाम विण किसे न रहिया लज। पौड़ी। तुद त्याएं बेद कते मां सन खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े, ब्रह्मे तुद त्याएं इंद्र इंद्रासना, संकर विष्ण अवतार हर जस मुखपणा, पीर पिकाबर शेख मसायक औलिये, ओत पोत निरंकार कटकट मौलिये, कूड़ो करे विनाश।

पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याये सदा हर सो लगा सत गुर सेव जाको कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख से आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लै हिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत भंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किच लदम बिखमना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट न सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभचित आए पूरन होवे आस नाए मन वसाए कोई न लगे बिघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुर ते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौ सह चरणी मैडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुरमत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया पगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यो लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया इक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखो बोले टिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछो है जम्बूर खवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाई है जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। करछिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख ना थी वही। पौड़ी वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छिडाए बंधन सगल काप, तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप, वड्डी हूँ वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात, नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागी हो जल सल मही अल सोए, नानक नाम अराधे है बिघन न लागे कोई पौड़ी। भगता का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए, भगता तेरी टेक रते सच नाए, जिसनो होए कृपाल तिसका दुख जाए। भगत तेरे दयाल ओ ना मेहर पाए, दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगता एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए, पीवत अमृत नाम जन नामी रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ, नानक अंदिन बिलपते ज्यो सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत, कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविये नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़िए, फौज पानी हाठ पंचा जोड़िए, दस नारी औ दूत देन चमोड़िए, जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़िए, त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़िए, परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़िए, गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़िए, हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़िए। श्लोक महला पंजवा। किलविक सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ, कोट कलेसा उपजै नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी होवै जुगत, हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवै मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ, महारोग विकराल तिने बिदारुओ, पाया नाम निधान बहुत खजानिया, जिता जन्म अपार आप पछानिया, महिमा कही न जाए गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू, कमाउंदिया सुख पुंच, त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए, आए चित निहाल साहिब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वाल निरंकार, सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा, सो भगता मन उठा सच समाहरा, तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार, राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा, पैनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना, जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना, नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना, जप जप तुद निरंकार परम पौ खोवना, जो तेरे रंग रते से जोन न जोवना, अंतर बाहर इक नैन अलोवना, जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना, नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक, नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग, जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आद जुगादि आप रखन वालिया, सच नाम करतार सच पसारिया, ऊना कही न होए कटे कट सारिया,
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आपसे सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किछ आपे आप बेअंत अपारिया, गुर पूरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किछ करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जन त्याया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जम्मे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा।

चार पाव दो सिंग गुंग मुख तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुसखई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछताई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाओ जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

रघुराई गुजरी श्री नाम देव जी के पदे कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु

मले ना लाचे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कवने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई ज्यो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई ज्यो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे

दूध तो बचरे थनो बिटारे हो, फूल पवर जल मीन बिगारे हो। माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो, और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ। मैलागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसे इक संगा। तूप दीप नई बेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्प

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

0: बेसवा जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे,
0: सूकर जोन वल वल अवतरे।
1: अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे,
0: प्रेत जोन वल वल।

सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपिमंग सत आद पावरतंग परमद पुतंग परकृत परंग जग चिंत सर्वगतंग केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयंग प्रहाव इच्छस जमाद प्राभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सर्वं गुरु प्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर

चित गले हर को संत बतावो मार्ग हम पीछे लाज चली रहा प्रिय के वचन सुखाने ही रहे चाल बनी है पली लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली।

मेरे मन मुख हर हर हर बोलिए, गुरमुख रंग चलू लै राती, हर प्रेम पीनी चोलिए रहाओ, हो फिरो दीवानी आवल बावल, किस कारण हर टोलिए, कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा, हम किसकी गुलगोलिए। सतगुरु पुरख मनावो अपना, हर अमृत पी चोलिए, गुरु प्रसाद।

हे गुनारी मन जो अपने प्रभावो नीचो नीच नीच अपनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अदंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने ताम शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंगारी।

देव गुनारी मन सगल श्यांत रही, कर्म कराम हार स्वामी नाम कोट गही रहाओ, आप मेक पे शरणाई इह मत साधु कही, प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही। जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी रही, खिन मैं खाप थापन हारे कुदरत की मना पही। देव गुनारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते, गुर प्रसाद पाहूं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते, रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते। महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते, सोत जागो हर हर हर गाया नानक गुरु चरण।

महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ खोजत खोजत खोज विचारो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एवं निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगर स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम निसाहा देख नारी महला पंजवा मन कह अहंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

अंग गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा करें करावन हार समरथा क्या नानक जंत बिचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरते आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रह करी न मोहत न चसा बिलंब हो काल नित नित हेरे अंग बिला

देगदारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायण माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देव गदारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहा मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिकन न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुरु प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुरु पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंदेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साज निवाजे मोहे दुष्ट जो खया पर उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर दरिया देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजै कर संतन का चेहरा रहाओ प्रातः काल लागो जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम तन मोरा अंग नानक एह लही है राग देव गंधारी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कथू जाए अनक अनक पांत बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंदर पाग सोग द्वारे अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग माने गृह प्रिय सीते सद थाए देव गंधारी महला पंजवा दर्शन नाम को मन आछे प्रम आयो है सगल खान रे आहे परयो संत पाछे रहाओ किस हो सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गाछे साध संगत की सरनी परिय चरण रेन मन बाछे जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्तर माया आचे आय पयो नानक गुरचरनी।

थारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल सारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहा हो।

ऊंचा आन न हम सर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो हा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनिकित पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महमा मन जीवे सुन सो। चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को। गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो। कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार।

आओ कह पे थारो हो कर कतराई दुश्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर्वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख सहज आनंदा अन को ही रे एक समार रहाओ सफल मूरत गुर मेरे माथ है जब तक देखो तब तक साथ है चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा कट कट अंतर सर्व मेरा ताकि शरण आसर प्रभु नानक जाका अंत ना पारावार देव गंधारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साक्ष्यों कर उल्टी रे झूठे की रे झूठ परीत छुटकी रे मन छुटकी रे साथ

कृपाल कृपा निज मेरा मुख साकत संग न जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलसी रे। राज देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हो बल बल।

ओ चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहूने संगत सिख गय हार्यो नीत नानक पौजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत।

मन सिंधियाला फल पाया, हर प्रभ गुरु नानक बाणी बोले राम। गुरमुख मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़ी, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़ी, मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी विचुना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन अंध भया है मेरी जिंदड़ी, अनहत

कोई हर सब आन मिलावे राम। हो मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी, हर सब की हर कथा सुनावे राम। गुरुमुख सदा आराध हर मेरी जिंदगी, मन चिंदेड़ा फल पावे राम। नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी, वड पागी नाम ते आवे राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी, गुरमत नाम प्रगासे राम। हो हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी, जो जल बिन कमल।

हर हर नाम ते आए राम, हर ताज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी, जन नानक नाम समाए राम। हर सेती मन गे दिया मेरी जिंदड़ी, जो बालक लग दुद खीरे राम। हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी, जो चात्रिक जल

तेरी ये गुर सतगुर वीर लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूर्ख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम गुरमस्तक हर सब लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत लित पाया राम गुर अमृत

हूँ बलिहारी तिनको मेरी जिंदगी जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदगी बिख औजल तारन हारो राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदगी तिन संत जना जयकारो राम नाम तुहार।

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम से आवे राम, पौन पानी बह संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावे राम, वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम से

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब दू सब वड्डा आराम है जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ कदाराम गुर सेविया गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडाराम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छाराम बिहाजड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रव तू जाने जो जिए कमाए राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकुराई राम मन मुखा हर

कर से वो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जन का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखरा साध गुरमुख, हर दरगह सो।

कर जोड़ो संत इकत्र होए मेरे लाल जियो। अविनाशी पुरख पूजे हाराम, बहुविध पूजा खोजी है मेरे लाल जियो। ए मन तन सब अर्पे हाराम, मन तन तन सब प्रभु केरा। क्या को पूज चढ़ावे जिस होए कृपाल दयाल स्वामी। सो प्रभ अंक समावे पाग मस्तक होए जिसके, तिस गुर नाल सुनेहा। जन कहे नानक मिल साध संगत, हर हर नाम पूजे हा। देह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम। हर मंदर हर जियो साजे।

खान पान सिगार बिरते हर पंत बिन क्यों जी जिए। आशा प्यासी रैन दिनियर रहना सकिए एक तिले, नानक पयम कै संत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिले। सेज एक प्रियो संग दर्श ना पाए राम, आवदन मोहे अनेक कत महल बुलाये राम। निर्गुण निमानी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निदे, प्रम पीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेशक नव निदे। गृह लाल आ

कवन रसना गुण कना त्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कल कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना।

جن بداتا پایا نام راتے جی داتے نت دن چڑھے سوایا رد سدھ نو

पतित उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतित उदाहरण शरण स्वामी कृपा निज दयाला, अंग कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महाबेड़ी इक नाम दे आधारा, दिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल।

नानक शरण समरथ स्वामी तैज राखो मोरे। जाके बिछड़िया तिन आप मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीचे।

नानक सब किछ आप है अवर न दूज जाए पौड़े। तेरी वड्याई तू है जानदा, तुझ जेवड़ अवर न कोई, तुझ जेवड़ होर शरीर।

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए। सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साजे, नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खाट किया, जदों आपे खाट किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया। फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख।

कह कथ्य न पाए अंगिन रहे सदा गुण गाए जिन कर्म किन न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन सुजे आप वसे मन आए नानक नगरी पाए आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कटीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै केते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए खाए नानक काम क्रोध किने न पायो पुछो ज्ञानी जाए महला की जा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार दिख माया तन संच मरे अंते हुए सब छार कर्म तरम सुच संजम करे।

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग है स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारजै तुझ करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही मर जमे आवे जाहे बिन सतगुर सेवे सिक्का बोलना नाम ना वसै मन आए नानक बिन सतगुर सेवे।

संध्या प्रवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे। मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या।

पौड़ी आपे संत परम संत सब आपे आपे ठाकुर दास पया आपे दस अठ वर्तु पायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बख्शे करे दया आप अपुल न पुले कभी सब सच कपाव से सच किया आपे जिना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा हर नाम न

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुरु मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

पौड़ी आपे सब कट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग छत्ती गुबार कर वर्त्या सुनाहर ओथे वेद पुराण न सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दू ही बाहर अपनी नित

तुरख समय का हुक्म पाया वी सतगुरु चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहा सदा रहा लिव लाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरसा जाए।

बस सब जो तेरे बस है तू सच्चा साहो भगत रते रंग एक कह पूरा वे साहो अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहो सब पदार्थ पालन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो श्लोक महला तीजा सब कुछ हुक्मे

प्राप्त होए। इस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

सतगुरु मोको हर दिया, सतगुरु मोको हर दिया बुझाए रहाओ, दुहागनी खड़िया बिल्ला दिया, सिना मैल न पाए, दूजे पाए करू।

एक को सच वर्ष है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इक्कीस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान है।

पग थक सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वडाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी।

गुर ते नाम पाया जाए, सच्चे शब्द सच समाए, ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए, रहाओ गुर के शब्द विच्चों मैल गवाए, निर्मल नाम वसे मन आए, कर में पूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुआर, नानक सेवड पागी जिन हर

का मन बिरसा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मन ता हर मिले ता विचों हो मैं जाए रहा, हो मैं सब शरीर है, हो मैं ओपत होए, हो मैं वड़ा गुबार है, हो मैं विच बुझ ना सके कोए, हो मैं विच भगत ना हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, हो मैं विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले हो मैं गई, ता सच वसिया मन आए, सच कमावे।

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाने हों क्यों कर फिर को मिलो ए आनी जो फिर पावे।

ए मैं गुण नाही हों क्या करी दुहागण, नित सुहागण सदा तिर रावे, मैं कर्महीन तब ही गल लावे, तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा, मैं निर्गुण

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख कपि सर कप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्त जाने तोरा, है कोई साजन पर्दा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौ बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजाने, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे। रहाओ दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिसे जनावो तिन्हे तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओत तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता, नानक साधु देख मन राता। वडहंस महला पंजवा,

महला पंजवा कुवड़ दाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वढांस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबू छीजे वड़ पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कहे निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना काट काट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वधांस महला पंज

विस्मा रहाओ। खुद आपे कारण आपे करना, हुक्मे जम्मण हुक्मे मरना, नाम तेरा मन तन।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नहीं रे। मेरे मन तन प्रेम प्रम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक थिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिल लाता। हौ क्या गुण तेरे सार समाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई।

सब सिंगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बिरथा जोबन सब जाए तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए हों वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जाने।

अन दिन सत सलाना तन तन वड भाग हमारा मन मेरे साचे नाम विचो बल जाओ दासन दासा हुए रहे ता पावे सच्चा नाम रहाओ जेवा सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वा पारा अंदिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार।

अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरुमत हर रस की जय रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरुमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काढ लिया साची वड्याई दिख से अमृत भये गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पये अंतर वासना समाये मानस जन्म दुलंब है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिनके हृदय वसया मोख मुकत तिन पाया वडहंस महला पहला छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद काया पूर विगार काहे नाइये नाता को प्रमाण सच कमाइये जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाइये लिखे बाजों सुरत नाही बोल बोल गवाइये जिथे जाए भइये भला कहिए सुरत शब्द लिखाइए काया कूड़ बिगाड़ काहे नाइये ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया नाम मीठा मने लागा दुख डेरा ताया सुख मन में आए वस्या जाम तै फुरमाया नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया ता मैं कहया कहन जा तुदे कहाया वारी खत्म कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे नाख चगड़ा पावना ने पाए चगड़ा स्वाम सेती आप वजावना जिस नाल संगत कर सरी की जाए क्या रुआवना जो दे सेना मने कहना आख नाही बावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब उपायन आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किछ पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समतरे नानका जिन नाम मिलिया कर्म होआ तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे वडहंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाना सब उपाय है आप आपे सर्व समाना सर्वे समाना आप तू है उपाय तंदे लाया एक तुझ ही किए राजे एक ना पिख पवाया लोभ मोह तुझ किया मीठा एक परम फुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समाना गावन सुरनर सुगड़ सुजाना सुरनर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन पावे माया मोहे चेते नाही एला जन्म गवावे एक मूड मुगद ना चेते मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा वक्त सो

जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हों आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप वाणी तिच मन की पूरी सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी बाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अपने पिर के रंग रती मोये सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया आप गवाया ता पिर पाया गुर के शब्द समाया सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई फिर आपे साचे साहे सवारी निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम गुरुमुख जिन्नी रावया मोये फिर रव रहा पर पूरे राम फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली कोली फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावे शब्दे रह हदूरे सोहागनी जाए पूछो मुये जिनी विच्चों आप गवाया फिर का हुक्म ना पायो मुये जिनी विच्चों आप ना गवाया जिनी आप गवाया तिनी फिर पाया रंग स्यो रलिया माने सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाने कामन वड़ पागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिगार बनाया हों मैं मार मुये तू चल गुर के पाए हर वर रावे सदा मुये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोगन बाला अंदिन कंक सवारी हर वार सुहागो मस्तक पागो।

कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वपारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम न पाया मन मुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बख्शे सोई गुरु प्रसाद जी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखी है होर करना किछु न जाई वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम वणजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साथ शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे कार्ड पिए पनिहारी जिस नजर करे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम। माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन

गुरमुख ए मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच परे भंडारा गुरमुख होवे सोई बूजे सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिले होर

जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देह बुझाई राम आपे देह बुझाई अवर ना पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

हौ गुरु बिन खरी निवाणी राम, जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम।

हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, किस दिन करी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरुमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हों वारी गुर सिख ली त्यारे। हर आपे पुरुष निरंजन सोई राम। हर आपे मिले करे सोई राम। जो हर प्रभ पावे सोई होवे, अवर न करना जाए। बहुत स्याणप लया न जाई, करथा के सब चतराई।

नेफल जन्म किन बिछा दुआया, ते साकत मोए मर चूरे, कर होंदे रतन पदार्थ सूखे, पागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श ना करियो, जिनी हर हर नाम ना प्याया, जिनी दर्शन सतगुरु पुरख ना पाया, हम चात्रिक दीन हर

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुखदा।

मार बिदारे। हर प्रभ कृपा तारी सुख दाते, दुख लाखे पाप सुन पापा। सुन गुरमुख नाम सब दिन से हो मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोग तय शरीरा। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपिया गहर गंभीरा। जात अजात नाम जिन पाया तिन परम पदार्थ पाया। जप हर हर नाम मेरे मन पाया। हर तारो कृपा।

विखंपयंगा अनतरंगा गुरमुख रूपा लंघाए हर गोहित चढ़वड़ पागी लंगे गुर सेवट शब्द कराए हम दिन हर रंग हर

महामार्ग पंथ बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै

हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जंग आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वधाई। वडहंस महला चौथा दे तेज नड़ी।

सातन कंस प्याई अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारे हर रंग राती सहजे माती हर प्रभु हर हर पाया नानक जन हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाय पावे रंग महली, हर रंग माने रंगती, गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया, जन नानक हर।

सो प्रभ पाया कथे न जाया सदा सदा संग बैसा। प्रभ जी पाना सच्चा माना प्रभ हर तन सहजे जीता, कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है।

गुण अवगुण मेरा किस ना विचारिया, बख्श लिया किन माही। नौ निध पाई वजी वधाई, वाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं वर

ठाकुर माने सो प्रधाने हर सूची रंग राते हर रसय अघाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कह सद कुरबान श्लोक देह अंधारी अंध सुंजी नाम विहूणिया नानक सफल जन्म जय तत उठा सच धनी संत तिनखनिए वंजा जिन मेरा हर प्रभ डिठा राम जन चास अघाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा अम्यो उठा सुख पाए दुख नाश परम विनाश संते जप जगदीश ईश जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कनिए वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई।

तह सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए। आप दुखता आप मुक्ता आप वखाना, नानक ब्रह्म कह गुण बिना से मिल जल जलें।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता। आठ पैर हर प्याये राम मन इच्छा फल पाये। राम मन इच पाये प्रभ त्याये मिटे जम के त्रासा। गोविंद गाया साथ संगाया कई पूर्ण आशा। तज मान मोह विकार सगले प्रभु के मन पाये। दिनवंत नानक दिन श्रेणी सदा हर हर त्याये। दरवाजे अनहतवाजे राम कट कट हर गोविंद गाजे। राम गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा। गुण के अंत किस कह न जाई कोई न सके पहुंचा। आप उपाय आप

नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई, गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाए, बिन गुर

सवारनहारा। सूरत महला तीजा, हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे, जिचर कट अंतर है।

सिर मिले उल्टी भाई भाई, जीवत मरे तां बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए, मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जप मीठा लागे पाई।

सतगुरु सेवे ता सुख पावे नावे ता जाएगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे हर रस साध न आया संध्या तर्पण करे गायत्री बिन बूझे दुख पाया। सतगुरु सेवे सो वडभागी जिसनो आप मिलाए हर रस पी जन सदा तृप्ता से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग न पाए नानक सतगुरु।

तुम उपजे दतमत तब ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुरु सब जग बोराना मन मुख अंधा शब्द ना जाने झूठे परम पुला ना रहो त्रै गुण माया परम पुलाया हों मैं बंधन कमाए जमन मरण सिर ऊपर उभो गर्भ जोन दुख पाए त्रै गुण वर्तें सगल संसारा।

पहला चौथा हर पहला इको अंकार सतगुरु प्रसाद आपे आप वरतना प्यारा आपे आप अपा हो बंजारा जग आप है प्यारा आपे साचा सा हो आपे वंज वपारिया प्यारा आपे सच विसा हो जप मन हर हर नाम सलाहा गुरु कृपा ते पाये प्यारा अमृत अगम अथाह रहाओ आपे सुन सब वेखदा प्यारा मुख बोले आप मुहाओ आपे उज्जर पाएदा प्यारा आप विखा ले राहो आपे ही सब आप है प्यारा आपे वे परवाहो आपे आप उपाएदा प्यारा सिर आपे तंदड़ै लाहो आप तराए साक्षी प्यारा आप मारे मर जाओ आपे पत्तन पातनी प्यारा आपे पार लंगाहो आपे सागर बोहिथा प्यारा गुर खेवट आप चलाहो आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेख है पाक साहो आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मिलाहो सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमानिया कर शक्ति जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूत खिंचे तह तेरी होए मेरे मन में हर दिन अवरना कोए सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा सब आपे करे सो होए सबना रिज्क समाहदा प्यारा दूजा अवरना कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अल्पना लखिया प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड़ अवर न कोए सब कट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सोरठ मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथा पै आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेख है प्रभ आपे आपे वंचन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महारस मीठा गुरु शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप तरह प्रभ आपे आपे जाल वतायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे सिंगी नाद है प्यारा तुन आप वजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही सब तापे आपे सतगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रभापे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जपदा पे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस त्रापे सोरठ महला चौथा आपे कंडा आप सराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहु आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यार है पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुर पूरे मीठा लाया रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वक्दा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाएंदा प्यारा बन बकरी सी हडाया आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा पै अग्न ना सकै जलाया आपे मार जीवाएंदा प्यारा सह लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा
आपे कारे लाया। जो आप चलाए त्यों चली है प्यारे, जो हर प्रभ मेरे पाया। आपे जंती जंत है प्यारा, जन नानक वजह बजाया। सोरठ महला चौथा, आपे सृष्ट उपाय दा प्यारा, कर सूरज चंद चनान। आप निताणिया तान है प्यारा, आप निमाणिया मान। आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान। मेरे मन जप राम नाम निशान, सत्संगत मिल त्याए तू हर हर। बहुर न आवन जान रहाओ, आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान। आपे बच कराएगा प्यारा, आपे सच निशान। आपे हुकम वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान। आपे भगत भंडार है प्यारा, आपे देवे दान। आपे सेव कराएगा प्यारा, आप दिवावे।

से आई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सत्संगत पुरुष तुम्हारे पुरुष है पुरुष मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रह न जाई ज्यों मछली बिन नीरे बिन सह क्यों नामे बिन मर जाई मेरे प्रभु कृपा जल देवो हर नाई हौं अंतर नाम।

में हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए है, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां पीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वडियाई, गुरमत राम नाम पर गासो, सदा रहूं शरणा।

हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सुपाए वक्त अनूप अगम अगोचर गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने गूंगे की मिठाई।

राजा मांस बपड़ा क्या सालाही क्या तिस्ता मोहताजा रहाओ जिन हर त्याया सब किस तिस्ता तिसकी पूत गवाई ऐसा तन दिया सुखदाते निफुट न कभी जाई अंध भया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई मन नाम जप नाम आराध अंधिन नाम वखाणी उपदेश सुन सा

करें प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किछ कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला, राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यो पिता पूत के पाला। सोरठ महला पंजवा कर पहला चौथ के गुरु गोविंद सलाई है पाई, मन तन हृदय पार, साचा साहिब मन वसै पाई, एहा करनी सार, जित तन नाम न उपजै पाई, से तन होए छार, साध संगत को वारिया भाई, जिन एकंकार आधार, सोई सत आराधना पाई, जिसते सब किछु होए, गुर पूरे जान आया पाई, तिस बिन अवर न कोए रहाओ। नाम विहुने पच मोए भाई, गणत न जाए गणी, विन सच सोच न पाई है भाई, साचा अगम धनी, आवन जान न चुके भाई, झूठी दुनी मणी, गुरमुख कोट उधार दा भाई, दे नामे एक कणी, सिमरत शास्त सो दिया भाई, विन सतगुर परम न जाए, अमित कर्म करता क्या भाई, फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सो दिया भाई,

पथ सदा है निर्मला भाई, निर्मल साचे सोए, नजर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाई है भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके, जो लो पाओ अभाव।

हो बुझाई, सेवो साध गहो ओट चरना, ने बिचरे मोत चसाई। रहाओ रे मन मुग्ध अचेत चंचल, चित तुम ऐसी हृदय न आई, प्राण पत त्याग आम तू रचिया, उर्जो संग बैराई। सोग न व्यापे आप न थापे, साध संगत बुद्ध पाई, साकत का बतना यू जानो, जैसे पान चुलाई। कोट पराध अच्छा दियो ए मन, कहना कछु न जाई, जन नानक दीन शरण आयो, प्रभु सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा, पुत्र कलत्र लोक गृह बनता, माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी, सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही, उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुरु ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा ते प्यो वड पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे सुख।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है बिहोन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा, वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया राखे। नानक को गुरु पूरा पेटे हो सगले दुख विनाशे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेखे सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी। मन मेरे जिन अपना कर्म गवाता, तिसके पाने कोई न फूला, जिन सगलो ब्रह्म पछाता।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड पागी पाये। रचना एक अनेक गुण पूरम, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, कोट संतन की आही। बूढ़क मोह गृह अंधकूप में, नानक लेहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला, जाके हृदय वस्या तू करते, ताकी तै आस पुजाई। दास अपने को तू विसरे नाही, चरण पूर मन पाई। तेरी अकथ कथा कथन ना जाई, गुण निदान सुख दाते स्वामी। सब ते ऊंच गड़ाई रहाओ, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक को तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें समाने, जाको तुद आप बुझाई। गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना, प्रगट पाए सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई प्यानी, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस करे दयाला, ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री मोहे व्यापी, कब ऊंचे कब नीचे। शुद्ध न होई है काहू जतना, ओरक को ना पहुँचे। मेरे मन साधु शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही। फिर आवत बारो बारा रहाओ, ओहो जो करम पुलावा कहियत, तिन में उर्जो सगल संसारा। पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्व थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात है, एहो खसम का किया। जासो कृपा करी प्रभ मेरे, मिल साध संगत नाओ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, सबना कर तू धारा। कहो नानक गुर बिन नहीं करिये, ये पूरन तत् बिचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम सत सारा। किलबिख काटे निमख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा कृपत मन पावे। साधु अमृत बानी रहाओ, मुक्त पुगत जुगत सच पाये। सर्व सुखा का दाता, अपने दास को भगत दान देवे। पूरन पुरख विधाता, श्रवणी सुनिए रसना गाये, हृदय त्याये सोई। करण कारण सम

सिमरै सदा गोपाला सूरत महला पंजवा। कर इस्नान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाते प्रभ सरणा प्रगटे पले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सुबाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुर पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखदा आया आग बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम पोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। सूरत महला पंजवा कर दूजा चौपदे

मन तै को देखा सुनमी ताहो तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुनमी ता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल।

जाना होए कैसुरे करो बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देओ उपदेशोरे। मैं मूर्ख की के तक बात है कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया देखिया से फिर गर्वास न तरियारे। सूरठ महला पंजवा जिना बात को बहुत संदेशरो ते मिटे सब गया। सहज सैन अर सुखमन नारी ऊद कमल दिखसया।

रात से भयानक भया करें बेनती रात ठाकुर से हम तेरी शरणया जह पंडार गोविंद का खुलिया जे प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत पंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जा का मम लीना सेजन तृप्त अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनदाई जिसनो विसरे मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक से पकरी संतन की हृदय पै मगन चरनारा सोरठ महला पंजवा राजन में राजा उरझायो मानन में अभिमानी

कट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्त पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो कुमन कुम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रसना साग लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी।

हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

तुम बांध दे हो मेहरवाना, तुम करो कला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर

त्रिन जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब खाने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चल तुम्हारे रूरो गूरो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे खाद संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही ना।

बाणी सोरठ महला पंजवा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरणा, संत हमारी ओट सपाणी, संत हमारा गहना। हम संतन से बन आई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई रहाओ। संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्योहारा, संतन से हम लाहा खाटिया, हर भगत परे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का खोखा, कर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाटियो सगलो लेखा। महा आनंद पाए सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर्षो मन मानिया, रंग रते बिस्मा दे। सोरठ महला पंजवा। जेती समगरी देखो रे नर, तेती ही छड़ जानी, राम नाम संग कर व्योहारा, पावे पर निर्वाणी।

तो अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुग

तेरा अंग मंगल विश्रामा, मन बाछत फल मिले अचिंता, पूरन होए कामा। इहा सुख आ गए मुख उजल, मिट गए आवन जाने, निरपो पे हृदय नाम वस्या, अपने सतगुर के मन पाने। उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द क्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जासा गुर चरनी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन छाड़ कौडी संग लागे, जाते कछु न पाये, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे मन सदा त्याय है। सिमरो हर हर नाम परानी, बिनसे काची दे अज्ञानी, रहाओ मृग कृष्णा अर सुपन मनोरथ, ताकि कछ ना गढ़ाई, राम भजन बिन काम न आवस, संग न काहू।

साधु संग उधारे पूरे गुर मेट्यो परम अंधेरा सज प्रेम भगत प्रभु नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अघाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जब तक समझम ज्ञान तत बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकी पूरन पाला कल कलेश मिटे दुख सगले काफी जम की फाता पहु नानक प्रभु कृपा तारी मन तन पे बिगाता सूरठ मैला संजमा करण करावन हार प्रभु दाता पार ब्रह्म प्रभु स्वामी सगले जी किए दयाला सो प्रभु अंतर जामी।

बृंदावत आराध नाम हर आए अपने खाने, जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी, सब दलिहार जाओ प्रभु अपने जिन पूरन पैस सवारी, गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नान प्रभु अपना अनुज सेती पर आया, सूरठ महला पंजवा प्रभु की शरण सगल पहला से, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर त्याया, प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता रहाओ, सतगुर नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अविनाशी, ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे, चरण कमल बसे हृदय अंतर अमृत हर रस्ता के, कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दास ताके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई, सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है, देवन हार न जाने, जियो पिंड साध जिन रचिया बल अपनो परमाने, मन मूड़े देख रहे हो प्रभु स्वामी, जो किच करे सोई सोई जाने, रहे न कछु छानी रहाओ, जेवा स्वाद लोग मद मातो उपजे अनक दिकारा, बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा, देखिवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके, दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई, काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई, सूरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई, गुर पूरे की बाणी जप अनग करो नित पाणी, हाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये, हर विसरण कभू जाई रहाओ, अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे, जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे, विघ्न विनाशन सब दुख मासन गुर चरणी मन लागा, गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा, मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली, आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली, सूरठ महला पंजवा पंच पदा, बिनसै मोह मेरा और तेरा बिनसै अपनी सारी, संतो यहा बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ, सर्व पूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

पाये गुरु द्वारी, कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। सोरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सगल वनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया संतो कट कट रहा।

सतगुरु कर्म चुकायो स्वर्ग निवासी सदा अलेपा सब में रहा समायो सोरठ महला सन्यवा जाके सिमरण होए अनंदा बिन से जन्म मरण पै दुखी चार पदार्थ नवनिध पावे बहुर ना कृष्णा सुखी जा को नाम ले तू सुखी सास सास से आवो ठाकुर तो मंथन जीरे।

सोरठ मैला संजमा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ अपनी विद आप जनाओ हर जन मंगल गाओ रहाओ बिसर नाही कब हुए थे ए विद मन में पावो गुर पूरा पे क्यों वड़ पागी जन नानक कतह न पावो सोरठ महला समझवा जा के सिमरन सब कछ पाये बिरती काल न जाई इस प्रभु त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिलना।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा, अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरमल कोई, गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त, तिन पेटत दुर्मत खोई,

बख्श लहो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो, हर चरण शरण।

चौनी दे वड्याई सोबा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो

पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ अंतर बाहर थान तरंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागे तिस जेवड अवर न कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारया राखन हारे।

प्रभ अपने पै दयाला, नानक बिघन न लागे को, मेरा प्रभ हुआ कृपाला। सोरठ महला पंजवा, साधु संग भया मन उद्दम, नाम रतन जस गाई, मिट गई चिंता।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पय अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय।

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटनहार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पय दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। साप दया प्रभ आप मिटाया, जन की इलाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र सब तिसके किए, सोई

गुर पेटत मन ओ माहा, सगल पराछत लाथे, मिल साध संगत कैसा थे, गुण निधान हर नामा, जप पूरन होए कामा, गुर कीनो मुकुट द्वारा, सब सृष्ट करे

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय हम दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए कोट जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया, कोए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ मैला पंजवा साहिब गुनी गहेरा, कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला, सब जी भय दयाला जब अनद रहो गुर चरणा, पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी, बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रख।

हर रसक रसक गुणदाया। प्रभ काटिया जम का पासा, मन पूरन होई आसा, जह पेखा तह सोई, हर प्रभ बिन अवर न कोई। कर कृपा प्रभ राखे, सब जन्म जन्म दुख लाते, निरपो नाम ते आया, अटल सुख नानक पाया। सोरठ महला पंजवा, ठाड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरे है राखी, शरण सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुख खिन में उपजे, मन हुआ सदा सुखाला। रहाओ।

हम संवारे अपने दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला रहाओ। वड पागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वड पागा। हर अमृत बाणी गावे, सादा की दूरी नावे, अपना नाम आपे दिया, प्रभ करण हार रख लिया। हर दर्शन प्राण आधारा, एह पूरन विमल विचारा, कर कृपा।

संग सहाई पाया जह जाये तां सुहेले कर कृपा प्रभु मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पावो जी कै संग सहाय रहाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतित पुनीत कर दीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सद जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाये बहुर न जोनी पाये जिस देवे पुरख विदाता हर रस चिन्ह जाता जम कंकर।

गुरु सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर कै पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो।

सर्व गुना निध गायो, सर्व गुना निध रायो, रहाओ दूजा। सोरठ मैला पंजवा

उपाय सुवाई, लख अपराध कमावे कर उपदेश छिड़के बहु पांती बहुड़ पिता दल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने ता किसते आख सुनाये, कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाये, होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पय आनंदा दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत प्यावत प्रभ अपना कार्य सगले सांठे, जग जीवन ना

आपे दाता आपे भुगता, क्या इह जंत विचारा, क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीव है प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संता धूरी, सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी।

करते पुरख ताल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट ना कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु भावे, सिमर सिमर दयाला, सब जी पै कृपाला, जय

हर के नाम की वडियाई, आप पैर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी, जन बोले अमृत।

गुर अपना हृदय ते आया, अपने सतगुर की वडियाई, मन इच्छे फल पाई, संतो दिन दिन चल

बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरती जाती,

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो किस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

जो शुद्ध भाव है मोहे से आणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई प्रभु आपे तेज रखाई। मेरा मात पिता हर राया कर कृपा प्रति।

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श।

सदा सदा हर जाते प्रभु बालक राखे आते शीतला छाक रहाई बिघन गए हर नाई मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला अरदास सुनी पग

हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी सो पाए जिस वड भागी।

दुख रोग का डेरा बनना परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी

प्रभु सतगुर दीन दयाला कैथे ओथे रखवाला प्रभु सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे कट कट शब्द सो पाके गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सुरैन साथ साथ संवाली पूरन सबनी साई रहाओ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा डोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया।

हमारी प्रभु राखी तेज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छे सोई।

कृपा करे जिस प्राण पत दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए ली।

अन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवा। भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे।

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख साया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वड्याई जिन अचरज सोभ बनाई रहाओ। बोले साहिब कै भाण बोले साहिब कै भाण दास बाणी ब्रह्म वखाण।

हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुर पूरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक।

तिसें प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राख है जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाख है। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता हाठ पहर तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सोभा।

बंधन काट सवारे पैर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। सोरठ महला पंजवा। जी जंत सब वस्त्र दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पावनिद पार उतारे। संतन के कार्य सगल सवारे दीन दयाल कृपाल कृपानिद पूरन खसम हमारे रहाओ। आओ बैठ आदर सब थाई ऊन न कतहूं बाता भगत सिर पाओ दियो जने अपने प्रताप नानक प्रभ जाता। सोरठ महला नामा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रे मन राम स्यों कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत रहाओ। कर साध संगत सिमर मादो होहे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल पुन तोहे ग्रस है समझ राखो चीत कहे नानक राम भज लै जात अवसर गीत। सोरठ महला नाम। मन की मन ही माहे रही ना हर पजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही राव। दारा मीत पूत रख संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारे हो मानस दे लही नानक कहत

परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत नह की नी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तैना हिन तन जोरन को धाया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंदाया ना हर पज्यो ना गुरजन सेव्यो न उपजो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारयो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर पज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण विचारो जेह सिमरत गनकासी उदरी ताको जसपुर धारो रहाओ अटल भयो त्रू जाके सिमरन अर निरपय पद पाया दुख हरता ए विद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गई कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महमा नाम कहां लो बरनो राम कहत बंधन ते टूटा अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरह पारा सोरठ महला नामा प्राणी कौन उपाव करे जाते भगत राम की पावे जम को त्रास हरे रहाओ कौन कर्म विद्या कहो कैसी धर्म कौन फुन करी कौन नाम गुरजा कै सिमरे पाव सागर को तरी कल मैं एक नाम कृपा निद जाहे जपे गत पावे और धर्म ताके सम नाहिन एह विद बेद बतावे सुख दुख रहत सदा निर्लेपी जाको कहत गुसाई सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई सोरठ महला नामा माई मैं के विद लखो गुसाई महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरझाई रहाओ सगल जन्म परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई बिख्या सकत रहो निस्बासर नह छूटी अदमाई साध संग कबहु नहीं कीना नह कीरत प्रभ गाई जन नानक मैं नाहे को गुन राख लेहो सरनाई सोरठ महला नामा माई मन मेरो बस नाहे निस्बासर बिखियन को तावत के विद्रोह को ताहे राहो वेद पुराण सिमरत के मत सुन।

जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रजपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, पाजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा ए जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो, दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सनबंदी, सगरे तन स्यो लागे, जब ही निर्तन देखियो नर को, संग छार सब पागे। कहो कहा जया मन बौरे को, इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन, जस्ता को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यो कयो ना सूदो, बहुत जतन में कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश, कहां पयो जो मूड मुडायो, पगवो कीनो पेश रहाओ। साथ छोड़ के चूठे लागयो, जन्म अकारत खोयो, कर पर पंच उदर निज पोखियो।

रतन बिसराना। रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरद पछानो पूले सदा प्राणी। सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमान।

आसा गुर कृपा जे नरकों की नी ते एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा प्रीतम जान ले हो मन माही अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहु जिसके रह विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत ने रह कर की नार बहुत हित जांस्यो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर पागी ए बिद को व्यवहार बन्यो है जांस्यो न्यो लगायो अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौतुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो मरे मसान ना जाई तृष्णा रात ना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई तू आपे दाना आपे बीना तू देवे मत साई मन बैराग रतो बैरागी शब्द मन वेद्या मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ असंख बैरागी कहें बैराग सो बैरागी जे खसमें पावे हृदय शब्द सदा पैर रचया गुर की कार कमावे एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेबा नेत्र सोत्र सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर तारी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुबदा विच बै

दूजा भाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख दे वड्याई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम न पाई। सुन समाद महापरमार्थ, तीन पवन पत नामं, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामं। कर्म सो कर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ामं, मन मुख झूठ लह पैमानं, आपे ज्ञान अगामं। जिन चाखिया से ही साध जान, ज्यो गूंगे मिठियाई, अकथै का क्या कथिय पाई, चालो सदा रजाई। गुरदाता मेले ता मत होवे, निगुरे मत न काई, ज्यो चलाए त्यों चाले पाई, होर क्या को करे चितराई। एक परम पुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुकम चलावन हारा। सेवा करी जे किछ होवे, अपना जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले कृपा कीनी, अमृत नाम आधारा। गगन अंतर वासिया गुण प्रगासिया, गुण में ज्ञान त्यानं, नाम मन पावे कहे कहावे, तत्तो तत्व खानं। सबद गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बौरानं, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला तित की, आशा मनसा बंदनी पाई, कर्म तरम बंधकारी, पाप पुन जग जाया पाई, बिन से नाम विसारी, एह माया जग मोहनी पाई, कर्म सबे वेकारी। सुन पंडित कर्माकारी, जित कर्म सुख उपजे पाई, सो आत्म तत विचारी रहाओ, शास्त्र वेद बके खड़ो पाई, कर्म करो संसारी, पाखंड मैल न चूकी पाई, अंतर मैल विकारी। इन विद डूबी माकुरी भाई, ऊंडी सिर कै पारी, दुर्मत कणी विगूति पाई, दूजे पाए खुआई। बिन सतगुर नाम न पाई पाई, बिन नाम में परम न जाई, सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजे पाई, मन निर्मल साज समाई, गुर सेवे सो बूजे पाई, गुर बिन मग्न पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई, कूड बोल बिख खाई, पंडित दही विलोई है पाई, विचो निकले तथ, जल मछिए जल देखिए पाई, ए जग ए हावत, गुर बिन परम विगूचिए पाई, कट कट देओ अलख, एह जग तागो सूत को पाई, दैदिस बांधो माए, बिन गुर गांठ न छूटे पाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम फुलाया पाई, कहना किछू न जाए, गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पा

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत कम करें प्रव तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े जे अनेक कर्म करे अधिकाई वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई जिन हर मन वस्या से दर साचे दरसा चै सचियारा ओना दी शोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा नानक तिन कै सद बलिहार है जिन हर राख्या उधारा सोरठ मैला तीजा दुत की निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लेर लाए रहो कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे साचे शब्द विचार पौजल पार उतारन पाई सतगुर बेड़े चार मनूरे ते कंचन भय भाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाव मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सद बलिहारे जाओ नाम निधान जिन रिता पाई गुरमत सहज समाओ गुर बिन सहज ना उपजे पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विच्चों आप गवाए गुरमति पौ उपजे पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेवै अपना पाई तिनके हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागे कोए सोरठ मैला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे पाग मिलाए सदा सुख सोहागणी पाई अंदिन रतिया रंग लाए हर जी तू आपे रंग चढ़ाए गावो गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाए रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख ना लग गई पाई हर आप वसे मन आए फिर का हुक्म ना जाने पाई साकु लखनी कुनार मन हठकार कमावनी पाई बिन नावे पूड़ियार से गावे जिन मस्तक पाग है पाई पाए सच्चे बैराग अंदिन राते गुण रवे पाई निरपो गुर लिव लाग सबना मार जीवालदा पाई सो सेवो दिन रात सो क्यों मनो विसारी है पाई जिस दी वड्डी है दात मन मुख मैली डुमनी पाई दरगे नाही थाओ गुरमुख हो वैता गुण रवै पाई मिल प्रीतम साच समाओ एक जन्म हर ना चेत्यो भाई क्या मोह देसी जाए किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई बिखिया नो लो भाई नाम समाले सुख वसे भाई सदा सुख सांत शरीर नानक नाम समाल तू पाई अपरंपर गुणी गहीर सोरठ मैला पंजवा कर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिने उपाया भाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई देकर अपनी वथ किन कही है क्यों देखी है पाई करता एक अकथ गुरु गोविंद सलाही है पाई जिसते जापै तत् मेरे मन जपिए हर भगवंता नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ जाके कर सब किछ है पाई नौनिद परे पंडार तिसकी कीमत ना पवे पाई ऊंचा अगमा पार जी जंत प्रतपाल

प्रम्पो होवे नाथ मिल संत सवा मन मांझी है पाई हर के नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवे प्रगास गुर बचनी सुख उपजै पाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई होइए सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखे सुने हजूर जित दिन विसरे पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिए चूर करण करावन समर्थो पाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावे ता मेल ले पाई हृदय नाम निवास गुरमुख कमल प्रगासिय पाई हृदय होवे प्रगास प्रगट पया प्रताप प्रभ पाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरे संतोखिया पाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया पाई नेचल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवई पाई सो जीड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहिब है पाई हों तिसके बल जाओ ओ निर्गुणिया रे पालदा पाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास पाई गूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन कड़ी ना जीवी है पाई सर्व कला भरपूर सास गिरास ना विसरे पाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर जिना प्रीत ना लगिया पाई से नित नित मरदे चूर अंचल लाए तराया पाई पौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया पाई की तुन अंग अपार मन तन शीतल होया पाई पोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई जे किल बिख काटनहार सोरठ महला पंजवां मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया जिसनो की तो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया मन तन तेरी टेक है प्यारे मन तन तेरी टेक तुद बिन अवर ना करन हार प्यारे अंतर जामी एक रहाओ कोट जन्म प्रम आया प्यारे अनक जोन दुख पाए साचा साहिब विसरिया प्यारे बहुती मिले सजाए जिन पेटे पूरा सतगुरु प्यारे से लागे साचे नाए तिना पिछे छुटिया प्यारे जो साची शरणाए।

पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोग उर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगिया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभु कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल ना उतरे ए विद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु विद दान दा दारा अन बस्तर पूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंदन डंडोत खट कर्मा रत रहता हों हों करत

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

जग कमला फिरे गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया ने फल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साज न पाया। ज्यो कस्तूरी मृग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कहे, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हौ मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना हों तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाए तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाज लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम कुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा हो मैं शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया काल ता

फिर मिलन ना पाए नहीं जमै ते मर जाए सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाहे मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ नानक गुरमुख बख्शी है से सतगुर मेल मिलाओ पौड़ी जो से मैं सत मुरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड़ गया से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया हर सेवे से ही पुरख जिना

नानक नाम रत्या बल जाऊं पौड़ी। सिर हर नाम तियावे जो हर रत्या, हर इक तियावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम तियावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपिया।

तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवे गुण में रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी कड कहदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहु बहु विद पांत कर कोई बूझे बूझन हारा अंतर विवेक कर सो बूझे एहो विवेक जिस बुझाए आप हर जन नानक कहे विचारा गुरमुख हर सत हर।

गुरुमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरुमुख बुझी है जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरुमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार है अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरुमुख सखिया सिख गुरु मेला आया,

पाली है कितै काम न आई। जन लावो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया गुरमुख सुख पाया।

साधु संत चढ़ जाते हैं, इनके कर्म कर्म कार्य सब पवित्र हैं, जो बोले हर हर राम नाम हर साते, जिनके पोते पुन्न हैं, से गुरुमुख सिख गुरु।

साए बिन सतगुरु नाउ न पाये बुझो कर विचार नानक पूरे पाग सतगुरु मिले सुख पाए जुग चार। महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुख त्रि

आए। नानक जे गुरुमुख करे सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हौ बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यो, सब किलवित कृथा। तन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर तरे विखा।

बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खा गया सब रोग गवाते दुखा कान जिना सास गिरास ना।

नानक गुर शरण आई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाणे।

पहला चौथा। हर दासन से प्रीत है हर दासन को मित, हर दासन के वश है जो जंती के वश जंत, हर के दास।

सतगुरु मिले ता पूरा पाया, हर रस रसन रसाई पौड़ी, रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा जुखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मद्दम, सतगुर की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही, सतगुर का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही, कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। महला चौथा। मन मुख माया मोह व्यापे, दूजे पाए मनुआ फिर नाहे, हम दिन जलत रहे दिन राती, हों मैं खपे खपाहे, अंतर लोभ महा गुबारा, तिनके निकट न कोई जाहे, ओए आप दुखी सुख कभू न पावे, जन्म मरे मर जाहे, नानक बख्श ले प्रभ साचा, जे गुर चरणी चित लाहे पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रभ पाया, सही विचक्षण जंत जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निधान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक पय पुनीत हर की रचनाया। श्लोक महला चौथा। गुरुमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाये, नामो चितवे नाम पढ़े, नाम रहे लिवलाए, नाम पदार्थ पाया, चिंता गई बिलाए, सतगुरु मिले नाम।

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम

मरकट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कह कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस्त हुआ झूठी माया।

आई बाजीगर स्वांश कहला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परम न जाई सब कट कट रही लुकाई जा को गुरमुख।

एक बस अगोचर लही है बस अगोचर पाई कट दीपक रहा समाए कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग।

मन पवने सुख बनिया, किच जोग प्राप्त गनिया, रहाओ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल परिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो

खारी अछत राज बिछरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी

पानी। आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा। मोह पटल सब जगत व्यापियो, भगत नहीं संतापा। कह रविदास।

लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हाँ बिन गांठे जाए पहुँचा। रविदास जपे राम नामा, मुझ जम स्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत की खन की।

माही ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

चुप चुप होए रहाओ तनाश्री मेला पहला। हम आदमी हाँ इस दमे मोलत मोत न जाना, नानक बिनवे तिस सरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख चेते के दिना, रहाओ सास मास सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक साहिर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे न देही मेरे साहिबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन मैं सो किस पाये पुरब लिखे का लेना। नाम खसम का चितना किया कपटी कपट कमाना, जम द्वार जा पकड़ चलाया।

क्यों सिमरी सिमरिया नहीं जाए, तपे ही आओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे की तै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए, श्री मैला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यो चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिए होवे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यो तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए रहाओ, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सबा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह

का पहरा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना, दरगे करिए तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखे सब कोई राव। कादी पूर बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानस बंग सोई दिल धोवे, मुसलमान सोई मलकोवे, पढ़या बूझे सो प्रवान, जिस सिर दरगे का निशान। तना श्री मेला पहला हर तीजा।

पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूप मले आम लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी रहा। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नन्ना एक को ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही।

ही होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंगनो मोहे आई प्यासा, कृपा जल दे नानक सारन को होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी महला तीजा कर दूजा चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद। ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए, से तनवंत हर नाम लिवलाए, गुर पूरे हर तन परगासिया, हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साची बाणी, सुखमन अंतर सहज समाणी। एक अचरज जन देखो भाई, दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए, गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, त्रासरी महला तीजा। हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान, गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती, पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए, जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप

वड्याई पाए, आपे करता जुग जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साथ रते प्रभ आप मिलाए, तनासी मैला तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवे जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब परज विगोई, मन मुख चोटा खाए अपनी पत खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसे पत उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उगरे हर शरणाई, राम नाम राते पगत दृढ़ाई, पगत

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सब सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाणे चले ताँ आप जाए। सात महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ताँ सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनो कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मितदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाद साधे जन कोई, अचर चरे ताँ निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मन मुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमति पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहा।

अवर न कोई, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा घर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटो, करण कारण

परम पट फूले गुरु प्रसादी जाने साची लिव लागी है पीतर सतगुर से मन मानिया तनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुर प्रसाद जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे नौ सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल पापी कटक उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी त्रैश्री मैला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर के नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मित कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तना श्री मेरा चौथा

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनासरी मेला चौथा कल युग का कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनासरी मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहा नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नापति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनासरी मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पै है सखाई। तनासरी मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर कौजल पार उतारी।

मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर बनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हूँ तिन कह शब्द लिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तासरी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी। बोलो पाई हर कीर्त हर कर जल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनों जानी। रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से अवर सब त्याग को है हर पानी। सनातनी मेला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख।

ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सत नानक के पातशाह। तना श्री मैला पंजवा कर पहला चौपदे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारे ओट पराध मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे पगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तना श्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो। अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सद ही संगे सतगुर सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले

पयो परदास सदा सुख मन में, सतगुरु पूरा पायो रहाओ, गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, कई प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत

होते, तिनकी बात बिलानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनाश्री मैला पंजवा वडे वडे राजन अर्पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं प्राप्त है बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा कामवंत कामी बहु नारी, पर गृह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनाश्री मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनाश्री मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद, ईहा ऊहा सर्व थोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ, जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से पगत बांछे सब तूरी, सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत मह सुख पाया संत संग रहे ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन।

आका तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला। नानक करके बोले तनासरी मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक इसनाना पुन दान बहु देन कहूं ना पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिखन न जाई लैन राव। जात ताप प्रमन गसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद नै पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन।

मनवा बहुर न कछू पावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्को अपनो चीत रहाओ पर तन पर तन पर की निंदा इनसो प्रीत न लागे संते संग संत।

गुण निधान दयाल पुरुष प्रभु सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्नवा हर हर लीने संतो बार हर के दास।

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन हाथ सितारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण फुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांछे नित नानक पुने पुने बलिहारिया तना श्री मैला पन्या मेरा लागो राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो।

समझाया। आम सकल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोतारी ओत गोपाल शरण पर्यो पूरन परमेश्वर। बिन से सगल जंजाल रहाओ सुर्ग मृत पयाल कू मंडल। सगल व्यापे माए जी उदाहरण सब कुल कारण। हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाये। पाये सर्व निधाना कर कृपा जिस देश।

संग ना चाले तिन स्यों हीत, जो गहराई से ही मीत, ऐसे परम पुले संस

रहा। साच धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो क्यों रचियो मीठा। दात प्यारी विसरिया दा तारा, जाने नहीं मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे। हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने। जो तुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार। खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम। हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार। साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अतमस्कीनी। संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के भगत गोविंद। सुख संतन के बिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र। तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम। उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम। देकर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुण पास। प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संता दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे। डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव। सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रास। मिल साध संगत होवत परगास, जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए। कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे। गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए। दरगह मिले तिसे ही जाए, सेई भगत जे साचे भाणे। जम काल से पए निकाणे, साचा साहिब सच दरबार। कीमत कौन करे विचार, कट कट अंतर सगल आधार। नानक जाचे संतरेणार, तनाश्री मैला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बाहर तेरा दरवासा। तू जन कह संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने। नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान। जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साकी। चरण शरण नानक दास हर, हर संति ए विद जाती। तनाश्री मैला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ से पाए। कंठ लाए गुरु राखे, संसार सागर में जलन न दीने। किने न दुत्तर पाके, जिनके मन साचा विश्वास। टेक टेक स्वामी की शोभा, अनद सदा उलास रहाओ। चरण तरण पूरन परमेश्वर, अंतर जामी साखियो। जान बूझ अपना कियो, नानक भगतन का अंकर राखियो। त्रासरी मैला पंजवा, जय जय पेखो तै हजूर। दूर कथो न जाई, रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याय। ईत ऊत नहीं बीछड़े, सो संगी गनिये। दिनस जाए जो निमक में, सो अल्प सुख पनिये रहाओ। प्रतपाले अप्याओ दे, कछ ऊन न होई। सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई। अचल अछेद अपार प्रभ, ऊंचा जाका रूप। जप जप करे आनंद जन, अचरज अनूप। सामत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें अरादा। नानक मंगे दान प्रभ, रेन पग सादा। तनाश्री मैला पंजवा,
जिन तुम भेजे तिने बुलाए, सुख सहज खेती कर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज सुन नेकल राज कमाओ। तुम कर आवो मेरे मीत, तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा पई बतीत रहाओ। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नाचन पाजन थाके, पर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खत्म निवाजे। अस्थिर रहो डोलो मत कभू, गुर के बचन आधार, जय जय कार सगल पू मंडल, मुख उजल दरबार। जिनके जीत नहीं फेरे, आपे पया सहाई, अचरज किया करने हारे, नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाये हीत, जा को किस ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जा के संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जा को कृपा की जय, सना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल कलेश लोभ मोह, मां पौजल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद विचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा, कार अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जप सत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जाले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनाश्री मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनज सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनाश्री मैला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भे, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा अबित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनाश्री मैला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कह सुखे ही। सनाश्री मैला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उठ ताके उठते उठते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुते नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरुदियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनासरी मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की सरदा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छड़ाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मनता बिरस न कतहू जात सतगुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी त्रासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर दिशा तीनो बले अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक सब लोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शन।

निंदक टिकन न पावन मूले, उड गए बेकार रहाओ, जह जह देखो तें तें स्वामी, कोई न पहुंचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत्चार, करन हार रखवाला हुआ, जाता अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रवतारो कृपा कर कारो पूजा कह फूप से काढ़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुणे सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एवं महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एवं पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम से आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। शक्ति रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण से आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई होआ कर्म रथ कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तन हार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीन मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जोबन तन प्रभ ताके मद में एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सांस्यो मन न लगाना, जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लोग समानो, हर्ष शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह जिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करो, जे बिद मन को संसा चूके, पौ निद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो उदर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

पूरे अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम पगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया प्रमाण, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जय देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं सारा, साचो ठाकुर सात प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पर फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए।

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नै चूके मन तेज एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल अश्रम कीने मनुआ ने पतीने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुख है दाई प्रभ की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा आवन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान, तीरथ दस पूर्व सदा दशाहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो, देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन, नित सात तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोये, गुणे हार परोए किसको रोये, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा, दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दयामते, फिर संग पावे सहज नावे, बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा, नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नदर मेल मिलाया, कहन कहे सब को एके वड आखी है, हाँ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी, तित मन मान्या मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी, पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती, मन मांजे सच सोई, तनाश्री मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा, जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया, फेर न सच्चे कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय, सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा, नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दे रहा वाद वदंदे आजियो, दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म ना बूझे, हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबत सिंजापे, साचा सिरजन हारा, भगत सोहे दरबार सबत सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए, गुर के शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए, जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे, साचे के व्यापारी, भूख प्यासो आज क्यों दर जाए साजियो, सतगुर पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन, अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई, आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा, कृष्णा नाम निवारी, तनासी संत मैला पहला, फिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटई पूर्व कमाया, क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती, हम गुण बै बैरोसी, तन जो बन आख की छाया, बिर्द पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण,
झूठी झूठ विछुनिया। बूढ़ी कर कालियो गुर कह पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो। हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेड़ दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए। अन दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए। राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे नारी जियो। रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे। माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती। लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण, फिर स्यो प्रीत प्यारी। फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो,

हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। सतगुण मिले सुभाए सहज गुण गाए जियो। गुण गाए विकसे सदा अंदिन जा आप साचे भावे। अंकार हो मैं तजे माया सहज नाम समावे। आप करता करे सोई आप दे ता पाई है। हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो। अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो। कदे ना विसारी हम दिन समारी। जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है। गुरमुख अमृत पीवा नगर करे ता सतगुर मेले। अंदिन विवेक बुद्ध बिचरे। अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। अंदिन रहे लिव लाए ता सहज समावे जियो। सहज समावे ता हर मन भावे। सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोबा जग अंतर। राम नाम लिव लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता। जो प्रभ करे सो भावे। सत्संगत मिले वड पाग ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया। मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे। हुक्म मन सुख पाया। अंदिन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना, संत संगत

मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैस ना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहां निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोक जैबो, पूछे तप कर बाहुर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिदै बडियाई, अंत न पाहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गन का पतित कर्म कीने, तेऊ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तऊ लाज न आई, राम नाम छाड अमृत काहे बिखाई। तज परम कर्म विद निखेद।

आई, ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई, जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करता।

बारह जो जन छकर चले था, देही गिरज न खाई, सर्व सोयन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहां भयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा स्यो करत ठगौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोह बत्कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दो परे अमृत सर, बिख को मार कडावो, पाछे बौर न आवन पावो, अमृत बाणी करते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोए है छीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, ते सज दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जन, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम दियो बाहर क्या परमो, ए संजम हर पाई है, मारवार जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो कुरंक निस्नाद बालहा।

क्या तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसला जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसाबिरा अथोन पुरसाद मरा असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी मह सागरा रहाओ। नाचंती गोपी जना नैया ते बैरे कना

जम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले तूर गोविंद चरणन की सुर नर मुन जन तिन्हू ते दूर रहाओ दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै हौ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलो सारंग पान रे कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लह न पारवी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सस्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछोटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल रा

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पै तार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे कन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सब्सी का गौ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैत सरी महला चौथा कर पहला चौप दे इको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसया गुर हाथ तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चले मिलन था जैत सरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध इयाना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे ही रे मेरे प्रीतम नाम पराना दिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जय श्री मैला चौथा
सतगुरु साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिस हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साध, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड पाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जय श्री महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी दे फिरें बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हाँ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, तर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जय श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वडपागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंध पए है माया, बिख संचय लाए जकीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साकै, जम काल सहे सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाक।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत् कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत

प्रसाद सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदे, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊंट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाये। जैत सरी महला पंजवा, कारतीजा दुपदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। देहो संदेशरो कहियो प्रिय कहियो, विषम पई मैं बहु विध सुनते, कहो सुहागन सहियो रहाओ, को कहतो सब बाहर बाहर, को कहतो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझियो, सर्ब निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अल्पियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बचहियो। जैसरी महला पंजवा, तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेश प्रभ को नीरो, बेसुमार बेअंत बढ़ दाता, मन है गहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आस्था मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसया, दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा, लोड़ींदड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन, बिसरे न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा, बिनसे प्रम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई, जो दिसे सो तेरा, संत संग पावे जो नानक, तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा, काल चौथा दो पदे इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग, तजी सियानप चिंत विसारी, अहं छोड्यो है त्याग रहाओ, जो देखो तौ सगल मोय मोहियो, तौ शरण पर्यो गुर पाग, कर कृपा टहल हर लायो, तौ जम छोड़ी मोरी लाग, तर्यो सागर पावक को जाओ, संत पेटे वड पाग, जन नानक सर्व सुख पाए, मोरो हर चरनी चित लाग। जैसरी महला पंजवा, मन में सतगुरु ध्यान तरा, दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा, प्रभ जियो माया करा रहाओ, ताल जाल अर महा जंजाला, छुटके जमे डरा, आयो दुख हरण शरण करुणा पत, गयो चरण आसरा, नाव रूप पयो साध संग, पवनिद पार परा, अप्यो पियो गत थियो परमा, कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा, जाको पय गोविंद सहाय, सुख सहज आनंद सगल स्यों, वाको ब्याद न काई रहाओ, दीसे सब संग रहे अलेपा,
नह व्यापे उन माई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की से संत सुभाई तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन चित्त

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहीं संभारा, नानक शरण परयो जा।

जाने हौ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मेंदा लाल रिझाया हौ तिस आगे मन देहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मुँह दस दिखा फिर के हिया यार वे

आप गवाया। जय तन पाग मथाने बहा पकड़, ठाकुर हों किद्दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया।

बधाई। माँ मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नान

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूलिय लूक करक विकार बिखड़े प्रभ नेरहू ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले न थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाइए आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याए त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाइए अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए श्लोक रे मन पासो त्याइए सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिए नानक निभे साथ संत साथियेरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए कर्त बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साद संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना भी।

खंड ब्रह्मंड पाताल दी प्रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास।

तर रथ अस दिए रच भले संजो सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जो हर सिमरत तन

मन वसंदड़ो सच सौ नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

कदाचन सिमरंत नानक तेजंत विस्तार में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छत्र चमर तक आसनम रतंत मूण अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हब

थोड़ी सपने से पीछे तेरे मुँह रख लाया बिसरे राज रस भोगे जागत बख

बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड तमाशया चित नया वसना नानक कोड़ी।

काज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर सं।

नच भोग रसम संग नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानके दात मिष्टं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहू रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

परवान जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई वडे भाग

हरणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने दयाल

اجو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اما

गुर प्रसाद। राग तोड़ी महला चौथा कर पहला, हर दिन रह ना सके मन मेरा, मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेले।

संतन अवर ना काहू जाने। बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाप स्वामी राव। ऊंच समाना ठाकुर तेरो अवर ना काहू तानी। ऐसो अमर मिल्यो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी। ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ। बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो माया मगन स्वाद लोभ मोयो। तिन प्रभ आप भुलायो रहाओ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो इक मोहत ना ए मन लायो। विकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए नहीं संत गुर सेवत आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया। अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ। ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो।

पयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगाथा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहु विद को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है खाम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहां उहां लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दा संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निध गायन, सांत सहज रहस्य मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहुते छूटे। पव जल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किच निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कह जन नानक। सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा। किरपन तन मन किलविख भरे, साध संग भजन कर स्वामी। तातन को इक हरे, रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत। थाम न जाही करे, जिसका बोहित तिस आरादे। खोटे संग खरे, गली सैल उठावत चाहे। ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही। प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा। हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता। औखद हर को नाओ, रहाओ तीने ताप निवारण हारा। दुखंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे। जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक। बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा। हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी। वसदी की नी आप, रहाओ जिसके से फिर तिन्ही समाले। बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने। हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना। दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन। जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा। स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते। तुझ बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाये। माया रच बंधारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी। सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंहान न करी रहाओ, वड़े पाग गुर अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

पूरो मन हर रंगो लोड़े गाली हर नी न होए रहाओ हों तू देंदी दर्शन कारण बीची बीती देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो दीहर न्याई मोहे।

पागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्रासत मिट्यो रे। जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबा।

ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग ए तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुर को शब्द मेरा ही रह दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन, तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते, अपने भगत को पूरन दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुण गावे, जसपुर अगावे समरथ कान, तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह जिस रव रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कबो न मरते चूर कंद बंद दिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर टोडी मैला पंजवा माई मेरे मन की प्यास एक खिन रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन।

सब बेता रिद्दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सो खावन विस्मन विषम पय विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे वडे पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पे सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गय कार लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुर बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ न दुख। टोडी महला पंजवा, हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुर अपना, कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तत् विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ न विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारे। टोडी महला नावा।

कनक कामनी के रस नहि कीरत प्रभु गाए रहाओ। जब चूठे को साथ जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस्दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव सुत्र।

कुम्हार के कर हांडी अच्छे राजा के कर सांडी दो बामन के कर रांडी अच्छे रांडी सांडी हांडी गो बाणे के कर हिंग अच्छे पैसर माथे सिंह गो देवल मदे लीग अच्छे लीग सीग हीग गो तेली के कर तेल अच्छे जंगल मजे बेल गो माली के कर केल आछे केल बेल तेल गो संता मदे गोविंद आछे गोकल मदे श्याम गो नाने मदे राम आछे राम श्याम गोविंद गो राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकत कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पद गुरमते हर राम राम रहाओ नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस त्यायो नहीं जानियो हर मरमाम सुर नारे गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान दिवायो रहाओ किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै किस देवो जिन हर मीत मिलायो किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो जन नानक को हर पेते स्वामी दुख हमें रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण

तारा कोट कोटन करके पाप सब खो गए हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपो निर्वैर निरंकारा हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे हर लादा गुरु विचारा हर आपे साव सराफ रतन हीरा हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर प्याय सुखदाता जहाँ का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जहाँ के हृदय बसिया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर।

हंस जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।

मैं दर मांगत पीछिया पाए रहाओ केसर कुसुम मृग मैं हरणा सर्व शरीरी चरना चंदन पगता ज्योति नहीं सर्वे परमल करना क्या पट पांडा कहे ना कोए ऐसा पगत वर्ण में होए तेरे नाम निवे रहे लिव लाए नानक सिंदर की।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला प्यामड़िए मानरा काय।

मुसलमानियां पढ़े किताबां कष्ट में करें खुदाए वे लालो जात सनाती होर हिंदवानियां एदी लेखे लाए वे लालो खून के सोई ने गावे नानक रत का कुंगू पाए वे लालो साहिब के गो नानक गावे मासपुरी विच आत्म सोला जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखे वक्त अकेला सच्चा सो साहिब सच तपास सचना न्याओ करे गुम सोला काया तपर टुक टुक होसी हिंदुस्तान समाल सी बोला आन अड़त्रे जान सतानवे होर भी उसकी मर्द का

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तन साला है सच सब ऊपर हर तन जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी से सार ना केते हर नामा खिन में दिन से सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए तंतक काल ग्रस है किस नानक ले छाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मेहदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरवान खुदाए दिन सुरैन जे तुद अरादे सो क्यों दोजित जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार।

हरतिया कथा कहानिया गुरमीत सुनाया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु के पाए जिन गुर का

लिया से आधार पाया, हर दर्जे पहनाया, हर आप गलाया। जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दी जय, हम तिनके चरण पखाल दे दूर कोल कोल की जय। पान सुपारी खातियां मुख बीड़िया लाइया, हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे, तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुरु के त्या रंग रलिया माने। सतगुरु दाता किए उस परे पसाओ, हौ गुरु विट्टो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा, हौ वेख वेख गुरु विजसिया गुर सतगुरु देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना पुख सब जावी। हर का मार्ग आसी है कहो कित बिद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वड दाने, हो सतगुरु को सगवा।

में हो रे मना जाग में हो कहां गाफिल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटियो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो व्योहार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुखन सुमानो तिलंग महला नावा हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर गीत्यो जात है कहो मान लै मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

तेज कतेज इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए, तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक।

यार क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रखती।

चंदी हजार आलम एकल खाना, हम सुनी पाक्षा सामले बरना, अस्पति गजपति नर नरिंद, नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुर समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराफुल कामा रहाओ। ए मन की थी हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया है इन दिद अमृत पावो। मन संपत जित अक्षर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद सायद रवत रहे। कहें कहे कहे कह जावे तुम सर अवर न को।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जप तपता बंद देरला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंख सुहेला तेरा एक नाम मजीठड़ा रखा मेरा चोला सद रंग तोला राव साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िया मेलेगा कोई मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई हों मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला नानक तह कहे लियो सौ खरा प्यारा हम सह तेरिया दासियां साचा कसम हमारा सुई महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर प्रकार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देवे दीखिया चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाई नाहे मूले पुछ तिस छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस कल्ले आए आप जिस नाहे दूजा मते कोए ताहे उसारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो किस पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तो हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे ही कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा ते लोग सुनाए सी नानक आत्मा

पकिया होवे पत्तने तीर्थ मल मल नाए तेरा सदना सुनीजे पाई जे तो बह अलाए रहाओ जैसा बीजे सो लुने जो खते सो खाए अग्गे पुछ न हो गई जैसा निशाने जाए कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना आवई सो दम दिखा जाए ए तन वेची बैकरी जे को ले जिकाए नानक कम ना आवे।

जोग ना सुनसा, जोग ना दंड, जोग ना पसंद कराये, जोग ना मुंडी मूल मुडाये, जोग ना सुनी वाये, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाये, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहा, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाये, जोग ना देश दिसंतर पवे, जोग ना तीर्थ नाये, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन सराग बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो, तेरा अंत ना जाना, तू जल कर

इन विद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जावे।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर पद के, हर कृपा तार मेलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से बाल दलगा, कौ जन्म मरना मेट्यो गुर तब्दी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेश लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर दंड लगाना, फिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय बाण हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीत है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर दौड़ ना होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के त्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत्संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई, ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जब तब संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नगर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए समाए। सुही महला चौथा, कर दूजा इक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गुरमत नगरी खोज खोजाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे।

नदर करे ता सतगुरु पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। तू ही महला चौथा, जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाको जे पाए, तौ कत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, हो मैं करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित सहसा दुख पूख सब ले जाए। रहाओ रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमस इत गाए। पतित जात उत्तम भया।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे इसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

सन्नाटा को तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम कर सोई, ज्यो पावे त्यो राख मेरे साहिब, मैं कुछ बिन अवर न कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं खुद आ गए अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख तुझ ही पासे। विचे धरती विचे पानी विच काश अगम तरी जय, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जय। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने आमान दिवाए, जो धरती चरण तले के ऊपर आवे, क्यों नानक साथ जना जगत आन सब तैरी पाए। तू ही महला चौथा तू करता सब किस आपे जाने, क्या तुझ पे आख सुनाइए, बुरा पला तुझ सब किस तू जाए, जेहा को करे तेहा को पाइए। मेरे साहिब तू अंतर की दिल जाने, बुरा पला तुझ सब किस तू जाए, तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानस पगत कराए, इतना सतगुर मेल सुख देवे, एक मनमुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जे ही तू नजर करे केहा को होवे, बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने, सब तुझनो नित त्याए, जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले, जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, जिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया, तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय, गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर हर।

कर सकी अपना कीता किसी न होवे जो हर पावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके जो पावे तिवे बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे तो कर्म कमावे जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद शिष्ट सब काजी कोई छेवा करो जे किस कीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूरख मुगद निचान जन नानक को हर बस।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाये, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभु सदा ते आए। सूही महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुक्म तजे अभिमाने। त्रैस्यों राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभु मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सखी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभु पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, सिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, दिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुही महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी तिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन कर कंत

मेरा प्रगटिया सूर जोत उजियारा सेज विछाई सरद अपारा नव रंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा उमक्यो ही मिलन प्रवताई खोज चरयो देखो प्रह जाई सुनत सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे तिर

क्या सेव कमावो क्या कहरी जावो विद कित पावो दर सारे मित नहीं पाये अंत न लइए मन करते चरनारे पावो दान तीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक को।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुकराता। कौन नानक प्रभ बिनु सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुक्ति जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदा से पुरख वाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोरंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बोर बोर लपट्यो जंजारा रहाओ, बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे रहाओ, कहो ना।

जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कौन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

चाहे गीत नाद अखाड़े संगा उहा संत करे हर रंगा चाहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वर्खा दोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही मैला पंजवा जा कह दर्श पाप कोट उतारे पेट संग ए पवजल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का सबक सुनत सुख सारे जा की तैल जमदूत बिदारे जा की तीरथ इस मने सुधारे जा के सिमरन मुख उजलारे प्रभु के सेवक प्रभु

जाके सिमरन कछ पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी। रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करन आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभ नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची देह मान खभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया तिन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो किस कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा हत कुतीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रव मेरे ली जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे

का नहीं जाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंत की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द

पल जल डूबत सतगुर काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरु की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत। सतगुर की रेण वडभागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, हाथ पैर हर हर जस जाइए।

संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, नानक मांगे संतुर वाला। सुही महला पंजवा, दर्शन देख जीवा।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदत नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी, सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महा निवासा। सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे। लोभ मुआ तृष्णा बुझ

पै जपना मुरारी। दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए। सुई महला पंजवा दीर छाए, दुनी जो लाए दोही सराई। खुनामी कहाए जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान। रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए। सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच सा।

प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख अनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक।

ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बन आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

साध गावे गुण सदार साला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माधवे पद

परण पोखण संग औद्विहानी। जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ अगोचर स्वामी। उदर नानक प्रभ अंतर जामी, सुई महला पंजवा। साप संग तरह पैसागर, हर हर नाम सिमर रत्नागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे। गुर पूरे मिल पाप जायण, रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ। मन तन निर्मल साज सुहाओ, आठ पैर पार ब्रह्म त्याये। पूरब लिप्त हुए ताँ पाये, शरण पे जप दीन दयाला। नानक जाचे संतर वाला, सुही महला पंजवा। कर का काज ना जाने रूड़ा, चूठे तंदे रचियो मूड़ा। जित तू लावे तित तित लगना, जा तू दे तेरा नाम जपना। रहाओ हर के दास हर से तीरा से, राम रसायन अंगिन माते। वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे, जन जन्म के टूटे गांडे। उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे, नानक दास हर शरण द्वारे। सुई महला पंजवा। संत प्रसाद नहीं चल कर पाया, सर्व सुख फिर नहीं डुलाया। गुरु त्याए हर चरण वंची ने, ताते करते अस्थिर कीने। रहाओ गुण गावत अच्युत अविनाशी, ताते काटी जम की फांसी। कर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सुही महला पंजवा। अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपे तिस की गत होवे। हर हर नाम नित रसन बखानी। रहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। सुही महला पंजवा। कर पूजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूरन कृपाला। रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला। अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचे संत रवाला। सुही महला पंजवा। तिस दिन दूजा अवर न कोई, आपे थमे सच्चा सोई। हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार। रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तुही महला पंजवा। दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे पाग पर

इस दया न पाई, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वास न देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किर्त पवाई, सुन साजन।

ना तौल हरे जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इह बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दित्या जे रच लो भाए सब किसी तुम रह हाथ प्रभु।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार कितवो मन आशा करो जन का

पालना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहु विध फिरिया पर को हिरिया। दिखना किरिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया, सुही महला पंजवा। रात मंडल कीनो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा। रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निध, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद पिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहाओ वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे दिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन के

आहा निमुख सिमरत जित छूटे। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर पर कादी करिए। रहाओ कोट तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जाए। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जाए। वेद कते छिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई। एक अखर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई।

जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभु।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, किन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर केटिया, से सब ते पए निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पए तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आया उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा।

कृपा करो प्रभु करने हारे तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याय है तेरी गत में तू है जाने कुदरत की न पाए निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

बादशाही सच्चे से पी राते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन।

कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमानी अरदास करी प्रभ।

ते संग पाए। अंतर की गत तुझ पै सारे तुझेवड़ अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी रहाओ। आस पैर प्रभ अपना त्याई है गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोर तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजे नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदियां महला पहला कर तहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंक मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहाओ। सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूर्ख मन समझाए आँखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल नाही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना किस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लाहा तारे आनिया, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया, इक नानक की

बिन सदगुरु नाम ना जाते, गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे, गुरमुख हो वैता एको जाने हो मैं दुख ना संताप है। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रहा समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूजे, गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंगा अंग कमावे दिखते संसारे, माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आख है होमे विच्चों जाए, आपके दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप साचे रंग राता गुर कै सह सुवाए। मनमुख सभी कूड़ो बोले बिख बीजे बिख खाए, जम काल बादा कृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, अक्सर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा गुरमत कह न जाए, हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमे विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे, सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरत है गुरमुख कोई जाने है जमन मरना हुक्मो वरत है गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब कुछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवालियो फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग

काया अंदर सब किछु वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही, बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखन पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाये, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाये, मोल कित ही नाम पाये, नाही नाम पाये गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे, और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, और क्या तो करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया, आवा गौण पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही, ताँ जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महला तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मर वंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहा। दुनिया केरी दोस्ती मन मुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना पुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप दुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोवन, निंदा पली किसे की नाही, मन मुख मुगद करन, मोह पा लेते निंदका नरके कोर पवन, ये मन जैसा सेवे तैसा होवे, तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवे किते परखाए, ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड़ पागी जे ओ

मनमुख मन न पिजई अपने ले चित कठोर सपे दूध पियाय अंदर विसने कोर आप करे किस आखिय आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे पास थक बनया सीगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उठे कूड़े ना टिकन ओ ना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सो लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रंग गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संचिए।

जो तुझ सेवे सो तू है होवे, तू सेवक पैज रखाए, भंडार परे भगती हर तेरे, जिस पावे तिस देवाई, जिस तू दे सोई जन पाए, होर ने फल सब चतराए, सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाए, एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई, जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई, गुरमुख बोले सो थाए पाए, मन मुख किछ थाए न पाई, पाला ककर वर्फ वरसे, गुर सिख गुर देखन जाई, सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई, अनेक उपाव करी गुर कारण, गुर पावे सो थाए पाई, रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करो मेरे साई, नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्त अधाई, नानक का प्रभ पूर रहो है, जत कत तत गुसाई, राग सूही महला चौथा, अष्टपदियां।

मिथ्या के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन मह रहा व्यापे अब तृष्णा कभू नहीं त्रापे।

जान ना पाईए प्रभ दरबारा, आसा अंदेशा बंद पराना, महल ना पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याज के वस्त्र दीना।

कछु सियानप उकत नाम होरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल हो नानक अरदासे, पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिया जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम प्रभ एक ते आए, सर्व फला सोई जन पाए, तार अनुग्रह अपना प्रभ कीना, केवल नाम भगत रस दीना, आद मद अंत प्रभ सोई, नानक किस बिन अवर न कोई। राग सूरी महला पंजवा, अष्टपदिया करनावा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन रिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो, संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना कुटई, कभू न होवे पंग जियो, पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित जियो। रहाओ देखे सुने ना जाने, माया मोहया अंग जियो, काची देहा विंसनी कूड कमावे तंग जियो, नाम से आवे से जिन चले, गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया, चलन हुक्म संजोग जियो, हुक्मे परपंच पसरिया, हुक्म करे रस भोग जियो, जिसनो करता विसरे, तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया, दरगह पैदा जाए जियो, ऐथे सुख मुख उजला, इको नाम से आए जियो, आदर दिता पार ब्रह्म, गुर सेविया सत पाए जियो। खान सनंतर रव रया, सर्व जिया प्रतपाल जियो, सच खजाना संचिया, एक नाम धन माल जियो, मन से कबो न विसरे, जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो, ताका अंत ना पाई है, ऊंचा अगम अपार जियो, जिस प्रभ अपना विसरे है, सो मर जमे लखबार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा, जिन मन उठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे, आठ पहर प्रभ जाप जियो, रंग रत्ते परमेश्वर है, बिन से सगल संताप जियो। तू करता तू करणहार, तू है एक अनेक जियो, तू समरथ तू सर्व में, तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी, भगत जना की टेक जियो। राग सुई महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां काफी।

मरों से वाडिया हौना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिर महिंजासरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान।

रमणी सुनी कहानियां जे गुर थी वै कृपाल, कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया, तू साही हुसा हो हों कह न सका गुण तेरिया। सहिया कऊ असंख मंजो हब बदानिया, चुप कोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किल विकवंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संसाए। सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार पगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह। रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरक अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तप विचारिया, नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुछ जी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मंज कुचजी अमावन दोसड़े, हों क्यों सो रावण जाओ जियो। एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिन्नी सकी सो रावया से अंबी छावड़िए जियो। से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाउ जियो। इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती ते मानक जियो। से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। होंगी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ी आस जियो। तै सहनालो मुतियस दुखा कु तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो। पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो। पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुणतास जियो। पाणे सो पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो। तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो। क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो। सुही महला पंजवा
गुणवंती। जोदी सह गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो, आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो, ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो।

दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाव जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाव जियो। हों आपको बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाव जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाव जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हों रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निव

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्ले, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमत पंथ समाए। राग सुही महला पहला, संत कर दूजा।

सहज मिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया स्थाई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया हम दिन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए पंच शब्द अनहद वाजे हम कर साजन आए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रभ पावो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया मन तन अमृत इन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा।

आए काल विकाल पै देवा ने मन राख्या गुरु ठाए नानक अवगुण सब जलाए गुरु संगम तब पाए राग सूही महला पहला करती जा।

कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सवाय नाम साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई। कीमत सो पावे आप जनावे, आप अपुल न फुले। जय जयकार करे तुद पावे, गुर के शब्द अमूल्य। हीनो नीच करो बेनंती, साथ न छोड़ो पाई। नानक जिन कर देखिया देवे मत साई। राग सुही।

लिव लागा। जिनको कृपा कीनी मेरे स्वामी, तिन अमदिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सह सुभाए, जुग में राम नाम निस्तारा।

का हो तेरा तू हमारा, जुग में राम नाम निस्तारा। साजन आए उठे कर माही, हर गुण गावे तृप्त अभाई। हर गुण गाए सदा तृप्तासी, फिर भूख न लागे आए। दे जिस पूज हो वह हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए उठे कर माही, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सुही महला तीजा कर तीजा, भगत जना की हर जियो राख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे। हो मैं सबद जलाया राम, हो मैं सबद जलाया। मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती। गुरमुख आप लखाणी, भगता की चाल सच्ची अत निर्मल। नाम सच्चा वन भाया, नानक भगत सोए दर साचे। जिनी सच्चो सच कमाया, हर भगता की जात पत है। भगत हर कै नाम समाने राम, हर भगत करे विच्चों आप गवावे। जिन गुण अवगुण पछाने राम, गुण अवगुण पछाने हर नाम वखाने। पै भगत मीठी लागी, अमजन भगत करे दिन राती। कर ही मैं बैरागी, भगती राते सदा मन निर्मल। हर जियो वेखे सदा नाले, नानक से भगत हर कह दर साचे। अमजन नाम समारे।

मर जन में दुख होई, दूजे पाए परज भी गोई, विन गुर तत न जानिया। भगत भी होना सब जग परमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे किने पछाणिया, हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पथ खोई। भगता कै कर साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना पे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे, नाम निधान सच पाया। सदा फुट कदे नाम खुटे, हर दिया सह सुभाया। हर जन ऊंचे सभी ऊंचे, गुर कै सबद सुहाया। नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग सोगा पाया। सुही महला तीजा, सबद सच्चे सच सोहेला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौ मैं सब किल काटे, साथ रखिया उधारे राम। सच रखिया उधारे, दुत्तर तारे, फिर पाव जल करन न होई। सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी, जिन सच मिठा लिया सोई।

सच्चा सबक सच्ची है शोभा साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी दूजा रंग न कोई नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवे

सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुवाए सापन कंठ प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर के सब सिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा

तित तन मैल न राती, हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

आए रंग सोरलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए।

पूर्वक है। इतना मन आधारो राम, इतना मन आधारो सृजनहारो, वड पागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

पाप विकार गवाया, हों मैं रोग गया पौ पागा, सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत् कर पोगो, अंजन सुख।

बलराम जियो। अंतर ममता कूड़ कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभदाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कार आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे न जाई। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर सीजनी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वडपागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुंगाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वडपागी पाया हर कथिये अकथ कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिये मस्तक पाग जियो, जन नाम सुबोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी ला मन सहज पया हर पाया बलराम जियो, गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंगिन हर लिवलाई, मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई, हर प्रभ ठाकुर का

चल चल परमिया, मन मुख परम कुलाया, नित आसा मन चितवे, मन कृष्णा पुख लगाया, अंता तन तर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक ना

राख लाज पगवाना, सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ कराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीच है कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, निचल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हुए दा

गोविंद गुण गावन लागे, हर रंग अंजन जागे, हर रंग जागे पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ शब्द सुहावा, सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर हर दुख नाशे।

तू वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जय सौ मत दी जय, हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण हो भी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कण चेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम दोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम, हो किछ नाही एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने, जाको नदर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

बन जा तू पर्वत मेरा ओला राम। हो बल बल जाई लख लख लख दरिया, जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर सो मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा। साजन कोठ सतगुरु मेरा पूरा, तिस दिन अवर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्व रहा पर पूरे। ताकी शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहारे, नानक सर्व कुर्बाना। ऐसा गुरु वड कागी पाये, जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किल विक उतरे, हर संत तूड़ी नि

खास खर्चक बिलछक सुख पाया, करते की दास सवाई राम, दास सवाई निखुट न जाए, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ ना थे, दुख न नेड़े आया, सांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूछ सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अमद उपजे, साथ संगत संग बनी, जिन उद्दम किया काल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, अखर तीरथ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा, गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम, संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाय अंदिनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तने अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जी जय, राग सूही महला पंजवा छंत, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने, पूरन भगवान अवगुण को ना सितारे, पतित पावन हर बिर सदाए, एक किल नहीं पन्ने काले, खट खट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा, नानक दास वा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हूँ चरण कमल पग छारा, प्रभु देखत जीवा ठंडी थीवा, जिस जेवर अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई, चरण कमल जब सागर तरया, कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा, हर निमक ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

नानक दास गोविंद शरण आए हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर नहीं चल सो कर पाया, सब अधो बिठे जियो ता चरण कमल चित लाया। प्रभ अविनाशी हूँ किसकी दासी, मरे ना वह जाए, धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया, नानक शरण कृपा नित स्वामी बड़ पागी हर हर गा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एनस लागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सो न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सो पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंद ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाईनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले र जाए श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब होवे लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे किमें सिगार पेये सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पुआये मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

वे छड़ तू पातिर लगी प्यार तू है वेश तिर किने न पायो मन मुख बज मोई गवार सतगुरु मिले सूहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रथा लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिंगार नानक कर।

जिस कर सहज पतार, नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रता, हो मैं मेरा कर्म वे किछ साथ न लिता, सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता, फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता, जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा, सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन, नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा, पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ संभालन। महला तीजा, कंता नाल महेलिया सेती अग जलाए, जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए, नानक कंत न जाननी से क्यों अग जलाए, पावे जीवो कै मरो दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख करते लिखिया, नामे जेवड होर दात नाही किस रूप न ना रिखिया, नाम अकुट निधान है गुरमुख मन वस्या, कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया, सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा, जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विकार, चलन सार न जानी काज सवारन हार। महला दूजा, रात कारण तन संची है पलके चलन होए, नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा, बब्बा चक्की जो करे ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा, मन हठ तरफ ना जिपे जे बहुता काले, परख जिने सत पाव दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई, आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई, सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाये करता करे सोई। श्लोक महला दूजा, जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या, नानक एहो पटंतरा तित दीदान गया। महला दूजा, तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता,

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हो में मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पै गवारी जिनकी ये तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा तामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो तरे प्यार कौ सिंगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिदार से जय तंत न आयो एवे पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखता रंग स्यों हो मैं तिसना मार ममता निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कार लग्या फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए हर नाम समावे सतगुर सेवा सतल है सेवे है फल पावे। श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी एक तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई। महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालियो नानक कह सियाणी क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी। हूं क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई। राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगतां की कबीर।

सूही कबीर जी, हर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो, रहन गई मत दिन भी जाए, पल गए बग बैठे आए, रहाओ काचे करवे रह न पानी, हंस चलिया काया कुमलानी, क्वार कन्या जैसे कर सिगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा, काग उड़ावत पूजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो, अमल सियानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना, क्या तय खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगे का आया, रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी, लेओ निबेर आज की राती, किछ भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गुजारो, साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सोजन पुरख सभागा, ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले, जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया पया कराया, कहो कबीर तेई नर फूले, खसम विसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाथ दी सब मत थाकी, एक ना खाक स्मार।

जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूके तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा। जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सब कावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अगरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गवन इकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है।

तै जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब कट पीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा। कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया पनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई। यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा। कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी। कह रविदास सदै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, राजसूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा होए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कूही मुंड अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा लो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बो पीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करंग दुहेला। हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पापी ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै करीब सहेलियो सहो अलायसी, हंस चल सी डुमना।

पथ में रहो रजाई रहाओ, जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चितराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हो बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन ना।

मन बेदया दयाल से थी मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम ना ही चिंत पराई रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी, जल फल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब बुद्ध।

तू दाता नाम परवान, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचिक तू अलग अधेओ रहाओ। माया मोह तरक तीनार, ऊंदी कामन कामने आर, राज रूप चूठा दिन चार, नाम मिले चांगन अंध्यार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोय, बाप दिसे वे जात न होए, एक एक को ना ही सौ कोए, करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया, ठाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुर बचनी मन सहित्याने, हर के रंग रता मन माने, मन मुख करम खुले बौराने, हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर दिन जीवरा रह न सके, खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली, सास विरास जतो अपने हर पाली, सब बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिया गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करने क्या कार कमाए, हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दासन दास, जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा, हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग छाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों, जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ न गई लिव लागण, जिन हर के चरण सारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता, क्या ए जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते हुए, ऐसा आख बखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई, सत्य आप सवारे, परम कुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे, नानक पाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोले आ जाए, दूजा होए कौन सो जी पाए, किसते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए, ताको जाने दुखदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवटी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिस आए, सब सच दिखा ले ता सच समाए। आपे लिव पात है आपे, आप बुझाए आपे जाते, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म हो वैसो सतगुर पाए, अंदिन लागे सहित्याना। रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पावे भगवाना।
कहत नानक तू साचा साहिब कौन जाने तेरे कामा। इक ना कर मैं देवड़े आई इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा पूरा खाद बनाया पूरे वेखो एक समाना। इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना। ए बाणी जो जियो जाने इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौं जुगा का हुन वेड़ा नर मनुखानो एक निधाना। जत संजम तीरथ ओना जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस पाए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंसर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हौ मैं माया शब्द जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसार वेखे बहु न मरे न जम पेखे कर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहस्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम से आई जय देखा तैरिया समाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अति मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इक्को अंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रभ अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती क्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमुख है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला धरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित कवना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करो सरना प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगत अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाये होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर हर जतिये वड्डे करमा नामहीन त्रिग जीव ते तिन वड दुख सम्मा कोई फिर जोन पवाइये मंद पागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूरब लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनम्मा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सकते हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ तारी मिल सतगुरु पार करा। रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे
जो संग काफत लोह तरा साकत नर होची मत मदम जिन हर हर सेव न करा ते नर पाघीन दो चारी कोई जन्म मोए फिर मरा। जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे थे कल जुग खेवट गुर शब्द करो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिप्त लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो। रहा काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब दिख रखो। राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार जम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी। हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनिक उपाव चितवी है बहुत तेरे सा होवे जे बात होवे नी। अपना पला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी। हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी। मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल महला चौथा। अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। राव साकत मूड माया के बदिक विच माया फिरे फिरंदे। कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यों केली बलद पहंदे। गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे। आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल हर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत पारनो। हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाये हर दुख विसारनो। राव हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसारन हारा। गुर पेटिया है मुकुट दाता।

की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा विंस बिनासा विच आसा होए निराशी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नाम के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे कर पहला इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे कर कृपा मोह मार्ग पावो साथ संगत के अंचल लावो क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्प पुयंगा हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जहां होए कृपाल सं गुरु मिलावे। हौ फिरो उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर किसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया किस आया फाद जो गूंगा मन में विस्माद अनग रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगा जाका वड़ प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने मूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोय अनाथ तुरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोय निर्गुण ली जय लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन सन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान का बिरथिया प्यारे राशन को तुम एक। रहाओ सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुर देव स्वामी सर्व कला कर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नामे ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नाम की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अराधिय निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे
गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुगद कोतारे पाहन पारू पारे नाम सदास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। बिलावल मेला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड़ गई सगली सुखी ना होत जियो मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो नानक से दसोबा बनते जो प्रभ अपने कियो हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया रस पोगण अत रूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसोवड पागनी सखिए संता संग समाई है कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरनी पाई है प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक से आई है दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल न जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बना पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत सोगा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तक व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मन तृप्ता ना हर गुण गाया, देहो पड़त प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ पागी पाये, मिल साधु हर नाम त्याये, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए, बिलावल महला पंजवा।

कर कृपा अपना नाम जीना रहाओ। अंग कूप से कर गह लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना। नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना। मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीठा। चरण कमल सो लाई है चीता, हों बलिहारी जो प्रभु ते आवत। जल न बुझे हर हर गुण गावत रहा। सफल जन्म होवत वट पागी, साफ संग्राम में लिव लागी। मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोह निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभु कर मैं आया रहा। भगत वत्सल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे। पतित पावन प्रभु बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभु तुमरी सेवा। प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे। ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरम पर ठाकुर मेरे रहा। एकत बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा। आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई। कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया। पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े। तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ। तन मन तन अपना कर थापिया, कर्म हार एक निमक न जापिया। महा मोह अंधकूप परया, पार ब्रह्म माया पटल विसरिया। वड्डे पाग सब कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंदो पाई, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद कणे, गुर पूरा पूरी जाकी बाणी। अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ। सगल संजाम करे प्रभ आपे, कहे मनोरथ सो प्रभ जापे। हर कर्म काम मोक्ष का दाता, पूरी तई सिमर सिमर विदाता। सात संग नाम करंग मान्या, कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ। हर हर नाम जपत नर जीवे, नर कुआर सातक नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चक मारो सातक बेचारा। निंदा कर कर पचे कनेरे, निरपट फास गले सिर पैरे। कहो नानक जपे जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा दो पदे।

मनै माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए परबार। रहाओ जैसा सुखना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तेज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो पगती लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो, अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख कर वागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग किसको लगा जिस केवट पागा, मैला कदे न हो वही नहला गै दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया नह जाए। रहो जया मरा नह व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कहीं न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार जम गुण तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल मेला पंजवा, राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बख्शन हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख्य नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दांस्यों नै चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव का तिनहारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याय, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाय। कही है काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अगर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, निरप हसे सिर ऊपरे पशुआ नहीं बूझे, बाद साध अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अकागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पर जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भुजीता,

मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद, फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर्द से पेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत। रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत, नेचल आसन मिटी चिंत माही डोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत, गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साथ संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे गत कई हमारी, जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी। रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अपदारी, निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी, तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा। टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल। रहाओ जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल, उपत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, तम पैरा को मोहते काटो जमजाल।

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुम्हारी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड पागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए। बिलावल महला पंजवा, साथ संगत के बास में कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना। रहाओ हर रस चाखल त्रापया मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल बिकसना। शीतल शांत संतोष होए सब बूझी तृष्णा, दैग सतावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे

राज मिलख सुतवारियां अग्नि में जाल, संत जना का छोरा तिस चरणी लाग, माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान, गृह साकत छत्ती प्रकार ते बिकु समान, भगत जना

का लूगरा ओड नगन ना होई, साकत सिरपाओ रेशमी पहरते पत खोई, साकत स्यों मुख जोरे है अदवी चों टूटे है, हर जन की सेवा जो करे इत उतन छूटे। सब कुछ तुम ही ते हो आप बनत बनाई, दर्शन पेटक साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर, हर नाम से आवो कर कृपा दयाल प्रभु ते निज सुध पावो, संत जना की रेणका ले माथे लावो रहाओ, नीच ते नीच अत नीच होए कर दिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अन पते न तावो, सफल दर्शन गुर पेटिए मान मोह मिटावो, सत संतोष दया धर्म शिगार बनावो, सफल सुहागन नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब ने प्रगटाया, जिस जन हुआ साध संग तिस पे हर राया, ए प्रतीत गोविंद की जब हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ, शरण परे की रास्ता नाही सहसाया, कर्म पूम हर नाम दोए अवसर दुलभाया।

मत फूलो मानुख जन्माया परमाया, नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल महला पंजवा, माती ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे, अनक छिदर मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसुओं सोर लिया के। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े नेहे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत लेहे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा, एक एक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समर्थ प्रभु पूरन गुण पास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करण हार जो कर रहा साई वडे आई, गुर पूरे उपदेशिया सुख खसम रजाई। चिंत अंदेशा गलत काज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंगराता। बिलावल महला पंजवा, महा तपत ते कई शांत पर सत पाप ना थे, अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन, जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, बस्त संग हर साध के पूरन आसाए। पैदन से तिल लोक के पाए सुख थान,

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो इस कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम एह कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सुलभ परम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभु के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभु अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

अपार मन से कभू ना विसरे सो पुरख अपार चरण कमल स्यो रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव निज निधान अमृत पिया मन सन आनंद नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा सित पाई अनद भया।

निंदक निंदा तरपचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटिए।

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया, तुमरी प्रतीत महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा हर का पैथर तो छुटे, जो ऊपर लादा रहाओ। जब तप संयम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरे नाही, जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत, तिस्यो तेरा खेद दीदा पंच बटवारी, उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्व सो अपना, सब जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम कर आनंद भया, सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे, सब के मन लोच पर उपकार निश्चित बते, नाही कछ कोच। तमसो खान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत तना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया, कुन सुख में पाया। सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया, जीव किया अथवा मोया।

तीर्थ करता करे काम को काढ़े, कीरी के हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभ की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रविय हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभ साध, मोह मगन कूप अंधते नानक गुरकाद। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे भगवान, कब देखो प्रभ अपना आत्म के रंग, जागन के सुपना भला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप न देख न पंच तत् ठाकुर अविनाश, ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगी सर, कर कृपा जा को मिले तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहरे दिल से कहे परमा,

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत दुखाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास, रखवाला गोविंद राय भगतन की रास। चोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार, चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार। बस कमावत सब

जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद्र की लक्ष्मी का जिन मारिया।

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुर पूरा आरा गया, सगला दुख गया, राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ। बां पकड़ प्रभ का गया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापिया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ रास्ता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है, किस बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है पर दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जन जपे अंजन सब जागे, पंख मंत नह जोई सिर चाख न लागे। रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में पेट प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणक हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राजया होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भये राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जाका बड़ प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

नानक जोर गोविंद का पूरन गुण पास। बिलावल महला पंजवा। मर मर जन में जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अंधन रंग।

मिटाए जीवालियन जहाँ कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कलकारी मन बांच फल दित्यन नानक बलिहारी।

थाकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोल अजाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवो, सदा करो किरताए। अभय दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाए। रसना अभय अभय गुण राती, नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख कंजन, मोहि चरण हृदय बसाए। सब तले तले सब ऊपर, तेरे दृष्ट दिस पाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई, हो मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नहत लिए, भगत वचन कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नाम।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख किस मन की व्यथा, तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई तल हमरे, तेरे नानक सुख चरनार है। बिलावल महला धन्यवाद। सुनियत प्रभु तो सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राणी, ऐसे मन विसारण।

दात आख पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध स्तम से जात। त्रिपद अधाये तेज प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण शरण नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल मेला पंजवा।

गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तय बिलसे, पहु नानक ठाकुर।

कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेचो, कह न जाए वड्याई, मगन पे ऊहा संग माचे, ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा, अहं बुद नहीं पोरा, ऊचन ऊच बीच ना खींचा, हों तेरा तू मोरा, एक अंकार एक पसारा, एक कै अपर अपारा, एक विस्थिरन एक संपूरन, एक कै प्राण धारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम ना आवत है, जासो राच माच तुम लागे, ओ मोहनी मोहावत है, रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ छिने में जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो, बिखे ठगोरी खावत है। त्रिन को मंदर साज सवारो, पावक तने जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो, फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर छाडे, केस गहे फिर आवत है, दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी, सोए रहो मद मावत है।

कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख के आवत हे। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली।

गोविंदमयी, जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा, पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांप दयाल दई, काम करो तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई, सत संतोष दया कर्म सुच संतन ते इल मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई, बिलावल महला पंजवा, क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई रहाओ, जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, कह मेरे प्रभ तू है सहाई, शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक को बूझ बुझाई, बिलावल महला पंजवा, अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्राप्त केतले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ, जो मानुख मानुख की सेवा, को किसकी लई लई फुन जाई है, नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है, बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, तंग बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना साकू, गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखियो मोहन सब कै संगे, पूर्ण न काहू सगल करी, पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी, बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता, हम क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ ने

ज्यों कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परिय, आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरिय। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरिय, नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करिय। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे काटे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै अनंदा मिटे अंदेसे, सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब पै स्यानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाप दे राख है अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोस है, कहो न मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाए।

मंथन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, इस रसना का मोड़ किस नाही रहा, कुल समूह उदरे खिन कीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद से की बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पर आही, संत सेवक भगत हर काके, नानक मन लागे है ताही, बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा रहाओ, छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते कहरा जंगा, कभू न बिसरे हिये मोरे ते, नानक दास एही दान मंगा, बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अप रखो हर आगे, सर्व जिया का है प्रतपाल रहाओ, शरण समर्थ अकप सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख है अपने को, किसनो लगे न काची बाल, दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल, बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहा, जेते पुनः चरण से कीने, मंथन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे, निरपो होए पजो जगदीश है, तुह पदार्थ बड़ पाग लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे, बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहा, काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत

कहो नानक किस प्रभ बलिहारी, जिन जन का तीनों पूरन वास। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आप वर्ते स्वामी, कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी, अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नान शरणाई, राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल महला पंजवा, ताप ताप ते राखे आप, शीतल पै गुरु चरनी लागे, राम नाम हृदय में जाप रहाओ। कर कृपा हस्त प्रभ जी ने, जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख आनंद परवेसा, कृष्ण बुझी मन तन सच त्राप। अनाथ को नाथ शरण समरथा, सगल सृष्टि को माई बाप, भगत वत्सल कह।

पार ब्रह्म परमेश्वर तू आया, कुशल खेम होए कल्याण रहाओ, गुरु पूरा पेटियो बढ़ पागी, अंतर जामी सुगर सुजान, हाथ दे राखे कर अपने बड़ सम्राट ने मान्या को।

दो मैं थाम रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जमके, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर पे खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

प्रभ तुझे सितारी, कृपा निध प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभा पे। बिलावल महला पंजवा, पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्कोर पया रहाओ, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए राखे जन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक।

तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माँ दो खिंचतने दिन श्रेन मन माए बसत है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाओ।

तो शब्द मेरे ही रहे बात है। हर नामा मन संग करो, तस्कर पंथ निवारो ठाकुर, सगलो परमा होम जरो, जो तुम करो सोई फल माने, पावन दुबदा दूर करो, नानक के प्रभु तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उद्रो। मिलावल मेला पंजवा ऐसी दीखिया जमस्यो मंगा,

पंजवा आ गए पाछे कुशल पया गुरपूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नीमया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शर्म दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

तब रस मंगल गुण गावो, अनज रूप ते आवो, नानक द्वारे आयो तो मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे

कहां पयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग ने फल तुम्हें मानो जो प्रभ जस बिसरावे। मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के।

तो ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, जहरा खो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत सुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म काहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

अब कोई कत कत बाढ़ करे दुख होई, कत कहने ते रहे न कोई, दिन रस राते मुक्त न होई, ज्ञान ज्ञान सब गुरते होई, साची रहत साचा मन सोई, मनमुख कथनी है पर रहत न होई, नामो पूले थाओ न कोई, मन माया बंदे हो सरजाल, कट कट व्याप रहे।

दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नाट साला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच नीच चंडाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया आये जाये, गुर सेवा तिल है पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगे पूछना होए,

आप ते आप खाए हो में ते अम दिन हर रस गीत गवैया। गुरुमुख परचय कंचन काया निरपौ ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया छिन पल रह न सकूं बिन नाम।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आ

हर चंदन वास सुगंध गंदैया, मिल सत संगत परम पद पाया, नै हिरड़ पलास।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते

शास्त्र नाम दृढ़ैया हौ में जाए ता निर्मल होवे गुरुमुख परचय परम पद पैया केहो जग वरण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मैला चौथा गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हौ बल बल सतगुर सतपुरखैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवै तित अय्या। दासन दास दास हुए रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द।

भवन करे बूझे नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया, आसन सिद्ध सुखे बहु तेरे, मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कहिया, त्रिपत संतोख मन शांत न आवे, मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध पहिया, अंडज जेरज सेतज उत्पुज

जात रविदास चमियार चमैया, जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया, संत जना की हर पैज रखाई,

बहुत मन चाहिया मन सन काट दियो गुर आगे है जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। खिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

मैं तुस आगे सिर कट कट पईया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटके देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हों खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हों किस विटों बल बल कुम गैया। अनेक जन्म के बिछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल न पावे मन मुख परमैया। गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन टील न पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया। बेसुआ कह कर बेटा जन्मया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर

बैन हर शरण सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह न तेव नित करे मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जाकी महा बिखड़ी कार ताकी

पंचभूत बेताला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर सा

गुरमत मेले भगत दिन लाए। खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पत पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सप्त संतोष शरीर, सात समुंद परे निर्मल नीर।

बिसराओ तही निरंजन साचो नाओ किसमें मनुआ रेहा लिब लाए प्रणवत नानक काल न खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा कट कट नाथ महाबलवंडा।

मारे डागर मरे ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए डर में कर कर में डर जाने तख्त निवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे ले पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड गया लिवलाए।

आप गवाए नानक नाम रखो उधार देवन हारे को जयकार वीर वार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए।

आए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी सात लिवलाए। सतगुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिव लागी, तेरे रंग राते सह सुबाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जा के मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, होमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत है अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के सबद हर दर

किसनों मारना का कह कोए, जिसदा साहिब डाडा होए किसनों मारना का कह कोए, साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे देवड़ियाई, किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए, गुरमति सांत वसे शरीर शब्द चीन फिर लगे न पीर।

एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए, एक को वर्ते अवर न कोए, मन रोष की जय जे दूजा होए, सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारे, सिती वार सब सब सुहाए, सतगुर सेवे ता फल पाए, सिती वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चल सदा सच समाए, सिती वार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काचे, मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्दे क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करें पेख सारी, पाव पाव परमे काची सारी, ऐसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुर सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच महल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक सिती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, सिती वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूजे सोजी पाए, इकत नाम सदा रे समाए, बिलावल मेला पहला संत दखनी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मुंड नवे लड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब चिंगारिया कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया, तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर देख फिर साधारिया, सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकत कथिय सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया, श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर के पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगसूती संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो, ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट रव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हो मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया, बिलावल मेला पहला, मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे, पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया, जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पब निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए,
त्रिभुवन को जी सूजे रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी सीजस देही राम मन मार विजय सबद सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने मैं आधार तेरा तू खसम मेरा मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो संत बिरावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम गुर कुछ है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम निमानिया हर मान है हर प्रभु हर आपे राम गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रात राम जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम गुरमुख मिल सुहागनी रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभु नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वचल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम न जीव दे ज्यो जल बिन मीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे विखा लिया नानक हर लिवलाग संत मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा गे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बिलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मूर्ख मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाय।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिए मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। बिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर

मेरा प्रभ अगम अथाह सा अटल गणया पूरन संजो गोराम सुख सुमु पया दया विजो गोराम मिल संत्याए प्रभ त्याए बने अचरज जांजिया मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांजिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस पोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहमत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिवलागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे दिन स्रे उमाहा तह रोग सोग ना दुख व्यापे जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत थगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिख मन दिसम पई पेक गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अधोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सखी आओ सखी वक आओ सखी असी तिरका मंगल गावे तज मान सखी तज मान सखी मत अपने प्रीतम पावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्प विखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुर विधि न त

मोहनी, ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी, मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाग दिखावे, ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे, गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जोनी।

सगर जाको करना पत दस दिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मोई मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए तात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते चीत चित वो मित अंधारे जो आख चकवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कमल रसना।

सुंदर छाप दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागिए जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पद पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा कृम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत न डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम। वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम। बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको प्रभु अंतर जामी राम। सुमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम। गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम। नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस पिनेरे अपने राम संगे से लोयन मीते राम। प्रभु से कछ उच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम। अमृत रस हर पाया बिछिया रस पीते राम। नानक जल जले समाया ज्योति।

राग नाद सब सोने जान लागे सहजान राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूके मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुझ उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताली लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिरावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारिए विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मितहर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुद अपर कोई ना सके

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिवलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना कीतिया सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अति दीर्घ बहु सुआओ, मन हट कर्म कमावने फिर से जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है, जो वस्त मंगी है साई पाई है, जो नाम चित लाई है, गुहज दल जीव की चीच है, सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है, गुर पूरा हर उपदेश दे सब दुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु पे खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई खेते हा फल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस्ती संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैज पथरिया गुर कहते सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाये जा को नदर करे, मानस ते देवते पे सच्ची पदक जिस दे, हो मैं मार मिलायन गुर कह सबद सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई।

जो किछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है, तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो, जिन विच्चों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए। हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा, अंदर कपट सभा दुख है मन मुख ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वर्त है दुख आ गए। कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना नाम जपत सुख पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, सिमर अज्ञान अंधेर छुपाया, मैला तीजा मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक सो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसार दुख व्यापे सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी, जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया अंगिन नाम के आया, दिखिया माए उदास है हो मैं शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया सत्य सो लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले हो मैं मोह वधाया, पंडित पर मोहनी पुल्ले दूजे पाए चुकलाया।

प्राणी हो किस दिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्हें गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में।

मोह थुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन, सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हथ ना आवे, कोई पावे तिथे जाए। गुरमुख सेवक पाए हर तन मिले, तुथो कर्महीन ले न सके। होर थे देश दिसंतर हर तन नाहे, श्लोक में ऐला चीजा। गुरमुख संसा मूल न हो गई, चिंता विचों जाए। जो किस हुए सो सहजे हुए, कहना किसु ना जाए। नानक तिनका

ना मरे ना ई हट विकाए, गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए। तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए, नानक माया का मारण शब्द है गुरमुख पाया जाए। पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती, तुरों हुकम बुद्ध निशान, पुत्ती पाती जावाई सकी, अगो पिछो टोल डिठा लायुन सबना का अभिमान। जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु, हर बख्शो से सब जान। जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल सुजे, जे वे मुख होवे।

नानक जो पावे सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरे मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया, नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन, हों मैं अंदर सन, साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन, जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचै रचन, दुष्टा सेती तिरहड़ी जंक्षो वाद करन, नानक साकत नरक में जम बजे।

दे सू दे रे चलो तुम नतर को तक्का गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनमंता अर्निल तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे है ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर रामे रंग राता। बिलावल गिरो तज बन खंड जाई है चुन खाई है कंदा अजो विकार न छोड़ दई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे करो पौजल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम संसर नाई दयाल मोहि संसर पापी। बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो साथ।

हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज दिन राखी हर नाकस नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें ले उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी शील कर्म जब भगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संखी एक आया तो लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर एक गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार।

भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध कर तले सब कृपा तुम्हारी। पूजा

बिलावल जे कुल साध जैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए राव ब्राह्मण वैश सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच्छ मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिख खोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे कुरैन पात रहे जल समीप।

सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रास है रहाओ। एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे प्राण गए सागर मिले फुन कामना आवे। प्राण जो खाते

टोक दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीव वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाए जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साले फल आस सब बिरथी जाए रहा जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करे ये बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जो कुछ आस

तुम में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित त्याय, जो खुन में किलित सब करे बिनासा, ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाय तह नार।

अपनी दिशा बहुत बहुत कदाचार अपनी दिशा कहूँ हर अपने स्वामी पे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी

मिला सा। जित दिन उनका स्वाव हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुका सा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुझ उपकरे दुख सुखासा। किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मन के गुर उपदेश ले जाको तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा। गौंड महला चौथा। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सतत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना। जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बडना। इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई।

अरे अविनाशी सदा चिर नहीं चलत मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए ज्यों रंग कुसुम्ब कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान, जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, जो सत संगत मिल पतित परवान।

सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लिये। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साके, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवा सब चित सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा ते आई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा ते आए तू तुद लय छड़ई है। गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर तब जान।

मिल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुण की मत पीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांस।

देखत करता अदृष्टो करता दृष्टो करता ओपत करता परलो करता व्यापत करता अलिप्तो करता वक्तो करता बूजत करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गौण महला पंजवा आंक्यो मीन कपक की न्याई तू उर्ज रहे हो कुसुम भाए ले पग तारे सास ले खेले तो उदरे हर गुण गाए ले मन समझ छोड़।

प्रेरियो तू लाग पड़े कुटुंबाए ले जो पंखी एकत्र हुए फिर बिछरे फिर संगत हर हर चाय ले जैसे मीन रसन साध बिन से।

ओ कृपाल दीन दुख पंजन सब तुमरे जी जन पाए ले पावो दान सदा दर्शते खां मिल नानक दास दसाए ले रागौन महला पंजवा चौक दे कर दूजा।

पोपट परलो निमक मझार, जाकी गत नित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए, आए न जावे ने चलतने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कटा देवे आधार, सतपुरख जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ, बाल सिखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत, कौन महला पंजवा, नाम संग सीनू व्योहार, नामो ही इस मन का आधार, नामो ही चित कीनी ओट, नाम जपत मिटे पाप कोट, रास दी हर एको नाम, मन का इष्ट।

आए, कट अवकट गत कट है सहाय रहाओ, रंक राव जाके एक समान, ईट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किछ करे सो आपे करे, जाका अंक ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगत पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए, गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत रहाओ, जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पावन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाके रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत को परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। पुले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ है जनाई, जिन गुरु मुकत ना पाये पाई, गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जा की कोई न मेटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ताका मन लाग, गौंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभेओ, सर्व पूज चरण गुर सेओ,

अंधकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सो

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम, रहाओ राम राम।

उतारे सबसे ऊंच राम परदास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत खोवे सात जना पद मल मल तोवे पंच फूट जने इकमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म

भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुर के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इतंते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल।

तिह सुवाओ पज अभिमान जान प्रभ संग साग प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल हुए।

कट कट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पति पावन प्रभ बिरत तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत्र पजिय भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचत पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत।

ओए ना सके जमकाल जग में आया सो परवान गुरमुख अपना खत्म पछान हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उनमा।

पाछवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गौन महला पंजवा पाव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंथ मां विचार पंच दूते मंत कौ शरणाई पूरन नाथ जंत अपने को दी जय हाथ रहाओ सिमरत।

सिदारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

नारायण बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा जाको राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है साध संग जपे निरंकार निंदक कै मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत नाहे जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए जो जो शरण पया हर राय सो दास रखिया।

संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल स्थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता कह निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कह सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कही है, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले। गौंड नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काम

जले जैसे काश का पूला, कहो कबीर तब ही नर जागे। जम का दंड मूंड में लागे गौंड, आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहा एले, आनंद मूल सदा पुरुषोत्तम, कत बिन से गगन न जाए।

सतगुर प्रसाद। पूजा बांध किला कर डारियो, हस्ती क्रोध मूड में मारियो, हस्त पाग कै चीसा मारे, क्या मूरत कै हो गलिहारे।

कालो साथ हथ ना तोड़े तरह ध्यान वहां कह हृदय बठे भगवान। क्या अपराध संत है कीना बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोत ले नमस्कार है बूझी नहीं काजी अंधियार है। तीन बार पतिया पर लीना मन कठोर अजमूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ ना एहु जति कहा वैसे हो। ना एहु जोगी ना अवधूता ना इस माए ना काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई ताका अंत ना को पाई। रहाओ ना एहु गिरही ना उदासी ना एहु राज ना पीख मंगासी। ना इस पिंड ना रत्तू राती ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती। ना एहु तपा कहा वै शेख ना एहु जीव है ना मरता देख। इस मरते को जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत होवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर हो राम की अंश जस कागद पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सिर चढ़ गोकाल। एहो मुंडिया सगलो दब खोई आवत जात नाक सर होई। रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वहां का मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे मुंडिया अंदिन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट हमको साथर उनको खाट। मूड पलोस कमर बद पोची हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बूढ़क की टेक। सुन अंधली लोई बेपीर इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का हो

शंख को बिख बिख संसार कर सीगार बह पखियारी संत की खिटकी फिरे बिचारी संत भाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे त्रकडायण हम तिसका बोझ

लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पावन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है छेदे सुहागन उरवार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे माँ पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे

कह कबीर कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन से नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, किस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए नाम अन कैसाद रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे के संग नीका वन। अन्य बाहर जो नर होवे, तीन पान में अपनी खोवे। छोड़े अन्न करें पाखंड, ना सोहागन ना ओरंड। जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी। अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जानिया, तन अनाद ठाकुर मन मानिया। राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग स्नाने तो न पुजे हर कीर्तनामा। अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अकबस्ता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता। गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता। सिवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेदं। सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं। गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण तजे वहाँ को ध्यान न जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो।

नर पे सुर हुए जात निमख में सतगुरु बुद्ध सिखलाए। नर पे उपज सुर्ग को जीते हो सो अवसद में।

तेरे नाम अविलंब बहुत जन उदरे नामे की निजमत एहे।

मुक्त की बरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, प्रण में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझा।

लांगत लांगत जाती थी। पांडव तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था। मोदी के कारखाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडव तुमरा राम

मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नी

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे ओ अब

साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कबहू जियरा ऊब चरक है कबहू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व जोत तेरी पसर रही जय जय देखा कह नर हरी जीवन तरब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाड़िया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जय पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे मेरे आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुरु मिले अंधेरा जाए जय देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आए कहे किन बिद सागर तरिय जीवतिया न मरिय रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे

आत करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन विद साध

पाप चोली मंगल चौताई तीखिया नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार न लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंग राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे। सुध साधक अर्जोगी जंगम तीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता तीरथ आखा तामन सेव करे। कागज लून रहे कृत संगे पानी कमल रहे ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम करी मेला पहला सुन माचिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले। ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ओनस सुन समाज समावे रहाओ। तिथिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमूल्य।

पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए। जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए। राम कली मेला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए। सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आए। गुर पार पारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हम कुछ को बलिहारिया। रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिन आया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया। जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा। राम कली मेला पहला सुरती सुर कर लाये एक तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख।

जाओ, प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुझ आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किछ किया सो किछ करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दर

तौन बुझे बिध जाने खुद कुछ चलत आप कर चीने आप तत पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई तुस्ते मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिध सोई ताकि गत मित और न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में ज्योत ज्योत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहों में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे इन भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाग देद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तें तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा गुर चरणी सेवक लागा गुर सत गुर परम चुकाया कहो नानक शब्द मिलाया राम कली महला पहला छादन पोजन मांगत पागे खुदया दुष्ट जले दुख आगे गुरमत नहीं लीनी।

पाए शब्द तृप्ता से रहाओ। पंच बैल गडिया देह तारी, राम कला निभ पथ सारी। तार टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार। गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग देओगी। भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्थिर कंध जपे निरंकारी। सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा। मन में मुंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन करना।

तीजा कर पहला। सत युग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सत युग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को विचार। युग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई। रहाओ त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड़े।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी हृदय परदास होवे लिव लागे गुरमुख हर हर नाम समाणी। रहाओ हीरा रतन जवे हर मानक बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा गुर कार तली दिखलाया। पाग हीन मन मुख नहीं लिया तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल सत्संगत मिल बुध पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कह सो मुक्ता राम जपत सोहाए। रहाओ जेवर पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए हर के सखा सखाए। से हर के चोर वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज न पाए। दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे जन नानक बख्श मिलाए। राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे अम्यो अम्यो हर रस है।

हर के लोग राम जन उत्तम मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत चेरी दास दासन की मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी हृद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करें बहु बाता कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाड सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवे। रामकली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड मेरे जन मिलदिया तिल न लाई है। हर जन अमृत कुंट सरनी के वड पागी तित न लाई है। राम मोको हर जन कारे लाये। हाँ पानी पखा पीसो संत आ गए। पग मल मल तूर मुख लाये रहाओ। हर जन वडे वडे वड ऊचे जो सतगुर मेल मिलाये। सतगुर जेवड अवर न कोई मिल सतगुर पुरख त्याये। सतगुर शरण परे तिन पाया ने ठाकुर लाज रखाये। इक अपने स्वाय आए बहे गुर आ गए जो बगुल समाध लगाये। बगुला काग नीच की संगत जाए करंग बिकु मुख लाये। नानक मेल मेल प्रभ संगत मिल संगत हंस कराये। राम करी महला चौथा। सतगुरु दया करो हर मेलो मेरे प्रीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगे गुर चरणी जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम में हर हर नाम मन पाया मैं हर दिन अवर न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सखाया रहाओ। मेरे इच्छिन प्राण न रहे बिन प्रीतम दिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड पाग गुर सरणी आए हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरे से नकते तिन कस कस नक वडाया। मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी रिद अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। राम कवि महला चौथा। सतगुरु दाता वड्डा वड पुरख है जित मिले हर उधारे। जी दान गुरपूरे दिया हर अमृत नाम समारे। राम गुरु हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड पाग हमारे रहाओ। कोट कोट से त्यावे ताका अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वडा वडेरा गुरमुख रखो उरदारे। जे वड पाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट विकट हर जन है हर रात है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभु हम बारिक हर प्रत पारे। राग राम

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई। मन तन साथ

कोई सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर

वासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी रामकली महला पंजवा त्रै गुण रहत रहे निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस

सर मेरा अनतराज भोग रसमानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्णा काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कतु जाता बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

जन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगल साजा राम को नृत्यकारी।

अब दिखावे सबो निरारी पासे कर कर मेरत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए हुए पूरा कहो नानक सो बहु।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंद। ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक

आए खिंचया सूत आई खाए चो में एक है मत है किया तें बिखरे थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे सुन जोगी के मन मीठी लागे रहो दूजा राम कली मेला पंजवा पागा करके लाई थिगली लो नारी सुआ है अस्ति अम्बे का कर डंडा करया क्या तू जोगी गर्भ है परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंखा दो दिहाई रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे तू का तृप्त न पावे नाथ छोड़ जाते लाज ना आवे चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी बाजे नित उदासेरा गुर गोरख की तें बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसनो हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंसा नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपिया नाथ दिन।

सै कोई ठाकुर मेरा सुगुण सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना और सोरे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले गीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनद रूप प्रटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा। सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी। काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ महिमा जा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप। लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

नीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप

जाको मया पल करतार जिसे सहाई हुए भगवान अनेक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे की ताकौन तीरी जी तो सगला पवन बेअंत में माता की केसक बरन बल बल जाये ताके चरण तिन्हीं किया जब तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल में परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पल प्रगा

संत जने परदास पया पूरे गुरबचनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालनहार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाए तेहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही दीठा राम कली मैला तन्यवा पंच सबद तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

गुर प्रसाद को इहो मेल पावे, प्रम पे मो न माया जाल, सुन समाद प्रभु कृपाल, ताका अंत न पारावारे, आपे

मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संत संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास गैर

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भिखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

कर कर खाते वडे वडेरे, किन्हीं ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए, ताकि आशा पूर्ण होए, हर पगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान।

सेवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो या नाराच प्रत पारे नित सार समारे अंत की बार ऊट सिधारे।

संयमा जो किछ करे सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभु की आज्ञा मन में मानी महापुरुष का।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

ਪਰਵਾਨ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਊਤਮ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा पेटत उधार राव। जब उसको कोई देवे मान तब आपस

इसे त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्तु तू आप।

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंदनते होई चोट। हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

तज अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरु का जप मंत्र निर्मल रहाओ।

अनेक सुख सहज समी जाए। राम करी मैला पन्नवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाए गुमान जिसका तू किसका सब कोई तुसे आराम।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरे इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस, सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत किछ कह न जाई, साच सच अलख अवे।

टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया अनंत।

संतर पा गए, माटी को जल दे, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे।

आई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के।

नाम जपत परम सुख पाये, आवागौन मिटे मेरे मीत रहाओ। गुण गावत होवत परगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत में होए

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे।

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर का।

जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ ज्यों, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करें विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किछ साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आद पुरख अपरम परसो प्रभु, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया, दुख सुख गुरुमुख समकर जाना, हरख सोग ते बिरकत भया, आप मार गुरुमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया, राम कली दखनी मैला पहला, जप सत संयम साच दृढ़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना, एनस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना राव, रह गगन पुर दृष्ट समय सर, अनहत शब्द रंगीना, सत बंद कुपीन परपुर लीना, जीवा रंग रसीना, मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना, एक में सर्व सर्व में एका, हे सतगुरु देख दिखाई, जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन न जाई, दीपक ते दीपक प्रगासिया, त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी छिन्नी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लो।

एह मन राजा पंच वसे विचारी सब द्रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी।

सोध तर पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा तेसना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपके मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा पगत निरारी गुरमुख योग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे।

से की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सो जी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करे गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जोगी।

भगत खजाना गुरुमुख जाता, सतगुरु बूझ बुझाई, संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ। सच रहो सदा सहज सुख उपजै, काम क्रोध विचों जाई, आप छोड़ नाम लिख लागी, ममता शब्द जलाई, जिसते उपजै तिसते बिनसै, अंते नाम सिखाई। सदा हजूर दूर नह देखो, रचना जिन रचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सो लिवलाई। सत्संगत में नाम निर्मोलक, वड़े पाग पाया जाई, परम न पूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई। बिन नामे सब पूली फिर दी, देखा जन्म गवाई, जोगी जुगत गवाई हंडे, पाखंड जोग न पाई।

जे नाम नमन निध पाए मन सा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चित अदुष्ट लगाई।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्द खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख हो वै सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप न पछाणे संतो कूड़ करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

निखंजन मेरा प्रभु अंत सखाए सब कुछ आपके आप वरते नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अस अभिमानी निर सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वसिया कट

एक पेख करे सिरे अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक अनदिन भगत करे दिन राती राम नाम उधारी अनदिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी सह दिन भगत न हुई कभी सह पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया।

कृपा तुम्हारी, सतगुरु ना सेवे माया लागे, डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय, जय मिलिए राम मुरारी, अंगिन जागत रहे दिन राती,

आई, इतना नाम आप बुलाए, इतना गुरमुख दे बुझाए, सदा सदा समाए हो संतो, जिस दी वड्डी वड्याई, इस दिन अवर न कोई राजा,

जिस हृदय नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा वाणी सब सुनाई नानक सुन वेख रहा विस्माद मेरा प्रभ रविया सर्व था।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कह तो अनन पगौते, मोहे दीन हर हर ओत लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अनपज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्या।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावे पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, दिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूजी कृष्णा महा शीतलाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले बिहोरा करया, उकत जोत ले सुरत परीख्या, मात गर्भ में जिन तू राख्या, राखन हार समार

ठाकर को रख लियो चीता, जिन दिया तुझ पवन अमोला, जिन दिया तुझ नीर निर्मोला, जिन दिया तुझ पावक बलना, तिस ठाकर की रहो मन।

इस सेवक मन आलस करे, जिस विसरे इस निमुख ना करे। हम अपराधी निर्गुनिया रे, ना किस सेवा ना कर मारे। गुर बोहित वड पागी मिलिया, नानक दास संग पातर करया। राम कली मैला पंजवा, काहू बिहावे रंग रस रूप। काहू बिहावे माए बाप पूत, काहू बिहावे राज मिलख व पारा।

अगन रहे हर बूट, मात गर्भ संकट को छूट, जाका नाम सिमरत पौ जाए, कैसे संत जना राखे हर राय, ऐसे राखन हार दयाल, जब तक देखो तुम प्रतपाल रहाओ, जल पीवत ज्योत खान तंत, तन बिज सह गृह आवत संत, लोभी का तन प्राण आधार, क्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, क्यों हर जन राखे

संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश, ज्यों साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौख होत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चातक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद करण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत, दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए, क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद, राम कली मैला पंजवा, जी जंत सब देखती है, प्रभ सगल तुम्हारी तारना, यो मन हर कै नाम उधार न रहाओ, किन में था पुथापे कुदरत, सब करते के कारणा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिदारना, नाम जपत मन निर्मल होवे, सुखे सुख गुदारना।

अष्टपदी ओंकार सतगुरु प्रसाद दर्शन तेतक पाप सब नासे हर सों दुह मिलाई मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत पूर मुख लाए।

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गुर पूरी मत दिनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक न जाई काल सियानप उकत न मेरी पूरे गुरु कमाई जब तब संयम सुख है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र मां बिख्या में गुर साचे लाए तराई अपने जीते आप संभाले आप लिए लड़ लाई साच कर्म का बेड़ा बांधिया पग जल पार पवाई बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई अकाल मूरत अजूनी संभो कल अंधकार दी पाई अंतर जामी जीवन का दाता देखत तृप्त अघाई

निराला हर सिमरत तृप्त अघाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कट आवे कट जाई संतो आप जुगादी है भी होसी सब दुनिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाये पूर रहा सब खाई संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली मैला पंजवा मन बच क्रम राम।

तुम समरथ अकथ अगोचर रविया एक मुरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारावारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी।

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद तृष्णा बहुत नाही बोलना, संयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना। गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराले, जो तू चलाए तुम चले स्वामी।

तुत संयम रहे कर्म कमाए, सहसे जीव मलिन है तुत संयम तोता जाए, मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए, कह नानक दुर्प्रसादी सहज उपजे तू सहसा उजाए, जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुंचे नाही मनसा सच कमाणी, जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले, जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले, आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई, कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए, जो को गुर के विमुख होवे।

सीरा जित जराओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंगिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे उसनो क्यों पोए न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब को जे ही करते खेल चाया जात पाना ताजमिया परवार पल्ला पाया लिव सुरती लगी कृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे पाओ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे वित्तो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विच्चो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमूलक है पाग सुना के नानका जिन हर पल्ले पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुरु ते रास जाने हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाना कह नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कित जिच हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न पुछना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अमरा सब विसरे जहाँ हर वसै मन आए ए शरीरा मेरा हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया हर जोत रखी तुद विकता तू जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदी आया कह नानक सुष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया मन चाव पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सती गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सतिये सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे अनहत बाणी गुर सब ज्ञानी हर नाम हर रस पोगो कह नानक तब आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया जे हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक यो शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से चितलाया ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो तरी हर दिन अवर न देखो कोई हर दिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने आ लिया यो विश्व संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा देखा हर इक है हर दिन अवर न कोई कह नानक के नेत्र अंध से।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो।

सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर पाणा आओ मैं पास जियो। हर पाणा गुर पाया मेरा, हर तब करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ पाणा।

गुर जाए हर प्रभु पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

तारा अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द भी

अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रवत्याय सब किछ पाय मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरमुख मिल निर्गुनिये कहो नानक कर प्रभ मेरे कै।

कठिन ना विसारिय। राम रामा राम रामा कंठ उर्धारिय। उर्धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिय। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिय।

कमलें आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई न जाने देख चलत दयाल सुन भगत वखाने जी जन सब तुझ त्यावे पुरख पत परमेसरा सर्व जाचक एक

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उदाहरणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक।

विपत निवारण राम। संत प्रभु विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमख मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीश रह। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखें दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत।

थाई हर नाम नव निध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे त्रय रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया।

बिन मिलबे सांत ना उपजै, तिल पल रहन न जाए, हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए छंत। रुत सर्द अडम

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साद पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर छंत रुत सिसियर सी।

संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रै प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम बने चंत हिम कर रुत मन पावती माग फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मनत आए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपिया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत

हर जप उतरे तीर छंत चरण विराजत सब ऊपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवन जावन दुख हरे हर भगत किया प्रवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल न मनते बिसरे तज आप सरणी।

क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति, गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले माणक मोती, समझे सूझे पढ़ पढ़ बूझे अंत निरंतर साचा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

थाप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहूणा मुक्त किव होई विण नाम है विरोध शरीर।

गुण में ज्ञान प्राप्त होए, गुणदाता विरला संसार, साची करनी गुर विचार, अगम अगोचर।

ऐ सोताओ नदर सराफ वन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कहिए किछ कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरन मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछाने।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख अंत

वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने।

सदा रंग राते बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे ता निज कर वासा पाइए। पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरिए गुर

वणते तू डट फिर रही, मन में करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए नानक।

अंत न पारावार। राड़े रूड़ा हर जियो सोई, तिस बिन राजा अवर न कोई। राड़े गारुड़ तुम सुनो, हर वसे मन माहे, गुर प्रसादी हर पाये।

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाने आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा पै सदा।

सतगुरु प्रसाद। सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो, तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ, नानक संत मिले सच पाइये सहज पाए जस लेओ। क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुक्त न कोए। रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ। साच कहूं अरदास हमारी, हूं संत जना बल जा।

कट कट बैस निरंतर रही है। चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए नानक सदार जाए। आसन बैसन थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाणे सच्चे सच समाए। दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाए पारो चरपट बोले।

आरोखाय औदु बोले ज्ञाने तीरथ नाय सुख फल पाय मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोले जोग जुगत बिदसाई हाटी बाटी नींद ना आवे पर कर चित ना डुलाई बिन नावे मन टेक न टिकई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहजे सचवा पारो खंडत निद्रा अलप आहारं नानक तत् विचारो दर्शन पेश करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाये पुरखा बाहुर चोट न खाये नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाये अंतर शब्द निरंतर मुद्रा हौ मैं ममता दूर करी काम क्रोध अंकार निवारे गुर के शब्द सो समझ परी।

अंतर बार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साच समाए क्यों कर बांदा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा एहो तत विचारे सो गुरु हमारा दुर्मत बांदा सरपन खादा।

एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाई सार नानक साचा करो विचार। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

कमावे गत मित सब दे पाए। आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी से वैसिक सो खोज लह हुकम विस्माद हुकम पछाने जी जुगत सत जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कही है सोई अवगत तो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचे परम पद पाये साचे शब्द समाय लिया एक एको सच एका जाने हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाने अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरे ता सब किछ सूझ।

गुरमुख तरती साजै साजी तिस में ओ पत खपत सोबाजी। गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतो पत स्यो कर जाए। साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साच समावै। गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरिए सच सुद्धि। गुरमुख सर अपसर बिद जाने गुरमुख परवित नरवित पछाणे। गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द।

जोग जुगत सच रह समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड़ पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए, गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए, गुरमुख साचे मन पतियाए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे, नानक गुरमुख चोट न खावे। गुरमुख नाम दान इसनान, गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, गुरमुख

वै कट कट तेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिले तिस पार उतारे अवगुण मेटे गुण निस्तार मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरमुख कदे ना आवे हार तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सचवा पारा गुरमुख बांध्यो सेत बिदाते लंका लूटी दैत संतापे रामचंद मार्यो एह रावण पेद बपीखण गुरमुख परचायण गुरमुख सायर पाहन तारे गुरमुख कोट तेती सुधारे गुरमुख चूके आवन जान गुरमुख दरगे पावे मान गुरमुख खोटे खरे पछाण गुरमुख लागे सहत्यान गुरमुख दरगे सिफत समाए नानक गुरमुख बंद ना पाए गुरमुख नाम निरंजन पाए गुरमुख होम में शब्द जलाए गुरमुख साचे के गुण गाए गुरमुख साचे रहे समाए गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला कवन कथा ले रहो निराले बोले नानक सुनो तुम बाले एक कथा का दे विचार पव जल शब्द लंगावन हार पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला अकथ कथा ले रहो निराला नानक जुग जुग गुरु गोपाला एक शब्द जित कथा विचारी गुरमुख हो मैं अग्न निवारी मैन के दंत क्यों खाये सार जित गर्भ जाए सो कवन आहार हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन कवन गुफा जित रह आवाहन इत उत किसको जान समावे कवन त्यान मन मन है समावे हौ हौ मैं विचों खोवे दूजा मेटे एको होवे जग करड़ा मन मुख गावार शब्द कमाये खाये सार अंतर बाहर एको जाने नानक अगन मरे सतगुर के पाने सच पैराता गर्भ निवारे एको जाता शब्द विचारे शब्द वसे सच अंतर हिया तन मन शीतल रंग रंगिया काम क्रोध बिख अगन निवारे नानक नदरी नदर प्यारे कवन मुख चंद हिवै कर छाया कवन मुख सूरज तपै तपाया कवन मुख काल जोहत नित रहे कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे कवन जोत जो काल सिंगारे बोले बाणी नानक बिचारे शब्द पाखत सस जोत अपारा सस कर सूर वसै मिटे अंधियारा सुख दुख सम कर

तत मिले मन माने दूजा जाए इकत कार्याने बोले पवना गगन गरजे नानक ने चल मिलन सहजे अंतर सुनंग बाहर सुनंग त्रिभवन सुनंग म सुनंग चौथे सुनने जो नर जाने ताको पाप न पुनंग कट कट सुन का जाने पेओ आद पुरख निरंजन देओ जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विदाता सुनो सुन कहे सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से।

पर सच भाए सो शब्द का कहां वास कथि अले जित तरिय पव जल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपने मन समझाए गुरुमुख शब्दे सच निव लागे कर नदरी मेल मिलाए आपे दाना आपे दीना पूरे पाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जय देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकल कला तर सोई नदर करे शब्द कट में वसे विचो परम गवाए तन मन निर्मल निर्...

कर साचा सतगुरु शब्द समाए मन का जियो पवन कथियले पवन कहाँ रखाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हों मैं प्यास न जाई शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कवन बुद्ध जित अस्थिर रही है कित भोजन तृप्ता से नानक दुख सुख सम कर जापे सतगुर ते काल न ग्रासे रंग न राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद न राख्या शब्द न पाख्या पवन न पाद्या सच न अरा दिया अकथ कथा ले सम कर रहे तो नानक

पियो आत्म सुख तारी सच आराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसी अले कहां बसे इहो पवना कहां बसे सो शब्द औदू ताको चूके मन का पवना नदर करे तो सतगुर मिले ता निज कर वासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होवे तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाने आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख हो मैं विचों खोवे तो नानक सहज समावे इहो मन ने चल हृदय वसियले गुरमुख मूल पछाण रह नाभि पवन कर आसन बैसे गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज कर आछे त्रिभवन जोत तो शब्द लह खावे दुख भूख साचे की साचे ही तृप्तास रह अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावे नानक आखे सच सुभाखे सच रपे रंग कब हू न जावे जा इहो हिरदा दे न होती तो मन कैठे रहता ना भी कमल अस्तंभ न हो तो ता पवन कवन कर सहता रूप न हो तो रेख न काई ता शब्द कहा लिवलाई रकत बिंद की मड़ी

तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नामे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई बिन सतगुर पेटे नाम पाया ना।

नानक बिन गुरमुआ जन्महार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उरधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार विदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिला।

कहलाती जा। सतगुरु सहजै दा खेत है जिसनो लाए पाओ, नाउ बीजे नाउ उगवे नामे रह समाए। हौ मैं एहो बीज है सहसा गया विलाए, ना किछ बीजे ना उगवे जो बक्से सो खाए। अम्बे से ती अम्ब रलिया बहुड़ ना निकस्या जाए, नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेख है बपुड़ा जिसनो सो जी नाहे, जिस वे खाले सो वेख है जिस वस्या मन माहे। महला तीजा मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख पाए। दुख विच जमे दुख मरे हों मैं करत विहाए, आवन जान ना सुजई अंधा अंध कमाए। जो देवे तिसे ना जानई दिते को लपटाए, नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा सतगुरु मिले सदा सुख, जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए, अज्ञान का प्रम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई, सब किछ आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द से आई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया, आप पिसाए पिसाए तैसे बात।

बीजा परम पुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सब सांस न दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई।